और अब चूंकि घड़ी ने जैसा कि कर दिया है इशारा कि बस खत्म ही होने वाला है म्यूजिकल दिल्लगी का आज का ये सफर हमारा, तो भाई सुन ही लीजिए अब वो सभी नाम जिन्होंने दिया आज के सवाल का बिल्कुल सही जवाब। नवीन भाटिया मोतीनगर दिल्ली से आया सबसे पहले जवाब। भाई 9:12 पर आ चुका था जवाब, मतलब मेरे सवाल पूछने के कुछ ही सेकंड्स के अंदर सर ने जवाब भेज दिया था और उसके तुरंत बाद यानी 9:13 पर ही आ गया था आशीष गायकर जी का सही जवाब मुंबई से। इसके बाद तो भाई झड़ी ही लग गई। कृष्ण कुमार गुप्ता भटीपुरा महोबा यूपी से, भाभानी शंकर चेन्नई से, कैलाश शर्मा गुरुग्राम से, देवदत्त परसौलिया दिल्ली से, अनु परजात्या मुंबई से, एसके खन्ना गुरुग्राम से, महावीर खत्री गुरुग्राम से ही, अशोक कुमार शर्मा अलवर राजस्थान से, शिव खन्ना विकासपुरी से, रामकृष्ण घोटीकर नवी मुंबई से, संतोष सक्सेना मुंबई से, पंकज मोहोड अमरावती महाराष्ट्र से, जयराम खोरवाल उत्तम नगर से, सतप्रकाश सनोठिया रोहिणी से, प्रकाश गोगिया जागृति एनक्लेव दिल्ली से, जी हाँ इसी तरह से पूरे नाम के साथ, जगह के नाम के साथ और फोन नंबर के साथ भेजना है अपना जवाब, ठीक है। मनोहर लाल गांधी विजयनगर गाजियाबाद से, रमन डोगरा दमताल हिमाचल प्रदेश से, प्रवीण रावत

0: पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से, राजा नई दिल्ली से, सुदर्शन मुखी दिल्ली से, सुनील तुप्तेवार नांदेड़ महाराष्ट्र से। देखिए कितने सारे सही जवाब आए। और जैसा कि आज मैंने आपसे पूछा था कि प्रसार भारती का गठन कब हुआ था, ये आपको बताना था। और क्या है इस सवाल का सही जवाब, ये मैं नहीं बताऊंगी आपको, बल्कि बताएंगी किरण जी, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ग्रीन रेसिडेंसी गाजियाबाद से। गुड मॉर्निंग मैम, कैसी हैं आप?
1: गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ
0: जी। और सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपसे आज के सवाल का जवाब और फिर करेंगे बातें। जी हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी किरण जी, बताइए कब हुआ था प्रसार भारती का गठन?
1: मैम, प्रसार भारती का गठन

0: मैं ठीक हूँ
1: जी। और सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपसे आज के सवाल का जवाब और फिर करेंगे बातें जी। हेलो,
0: हेलो
1: हाँ जी किरण जी, बताइए कब हुआ था प्रसार भारती का गठन?
0: मैम, प्रसार भारती का गठन 23 नवंबर 1997 को हुआ था।
1: बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है और इसीलिए तो आपको फोन कॉल भी गया है। चलिए अब बताइए कब से सुन रही हैं आकाशवाणी, कैसा लगता है और किस तरह के शोज पसंद करती हैं आप आकाशवाणी पर?
0: आकाशवाणी को सुनते सुनते मुझे काफी टाइम हुआ है,
1: जी
0: मैक्सिमम कम से कम 20 साल तो हो गए।
1: अरे वाह क्या बात है जी। किस तरह के शोज पसंद करती हैं, क्या कुछ अच्छा लगता है जो 20 साल से
0: मुझे
1: बंधी
0: हर
1: हुई
0: तरह
1: हैं?
0: के सॉन्ग, मुझे ज्यादा ओल्ड सॉन्ग पसंद है।
1: ओके, तो फिर
0: हाँ
1: तो FM गोल्ड आपके लिए बिल्कुल मुफीद है
0: हाँ हाँ जी हाँ।
1: जी। और बताइए दिन कैसे शुरू होता है, क्या करती हैं, घर में कौन कौन है, बताइए अपने बारे में
0: हाँ, मेरा मेरे सुबह का रूटीन है, सुबह मॉर्निंग उठ के बस
1: जी।
0: उठना और फिर मॉर्निंग वॉक जाना और बच्चों को देखना, उसके बाद सुना। फिर मेरा रेगुलर ये है, मैं सॉन्ग जरूर सुनती हूँ अपने साथ।
1: अच्छा, सॉन्ग जरूर सुनती हैं, तो कोई ना कोई फेवरेट सॉन्ग भी आपका जरूर होगा,
0: हाँ मैं
1: तो
0: काफी
1: बताइए
0: सॉन्ग
1: हम
0: होगा।
1: आपके लिए प्ले करेंगे
0: हाँ, मैं खानदान मूवी से
1: जी।
0: सॉन्ग सुनना चाहती हूँ, तुम ही मेरा मंदिर हो, तुम ही देवता हो।
1: अरे वाह, बहुत ही प्यारा गाना है, तो हम सुनेंगे इसे जरूर, लेकिन पहले आपसे सुनेंगे जरूर। थोड़ा सा गुनगुना दीजिए
0: ओके
1: हमारे लिए
0: ओके ठीक
1: जी।
0: तुम

0: हूँ।
1: क्या बात है, बहुत ही अच्छा आपने गाया। अच्छा ये बताइए, शादी हो गई आपकी?
0: यस
1: तो हस्बैंड जी को सुनाया कभी ये गाना?
0: हाँ, उनका फेवरेट गाना है ये, मैं
1: अरे
0: उन्हीं के लिए
1: वाह,
0: सुनना चाहती हूँ।
1: तभी तो चलिए आपको और आपके हस्बैंड जी को भी कर देते हैं खुश, और बहुत जल्द सुनाते हैं यही गाना। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू।
1: थैंक यू सो मच। तो ये थी किरण कुमारी जी गाजियाबाद से, और प्यारी प्यारी मीठी मीठी आवाज इनकी और प्यारे प्यारे गाने की इन्होंने फरमाइश की है, जिसे हम और आप सब मिलकर सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि जाना कहीं नहीं है आपने। इस गाने के बाद आप सुनेंगे समाचार, देश और दुनिया से जुड़े हिंदी और अंग्रेजी में, और उसके बाद ठीक 10:30 बजे दिल का मेल बॉक्स खुला रहेगा आपके लिए, और मैं करूंगी आपका इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर किए गए एक दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग यूआरएल पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
2: सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्रिस्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर काम हो रहा है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली डीईएमयू रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जिंद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी क्षमता 1200 किलोवाट होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी।

वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस के साथ खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: promoting green and sustainable transportation in the railway sector. The train will run between Jind and Sonipat at a maximum speed of 75 km per hour using hydrogen fuel cells to generate power. Russian embassy in South Africa has said scientists in Russia have developed a new vaccine against the latest strain of Ebola virus. Russian Health Minister Mikhail Murashko announced the development. Scientists said the vaccine may also work against the rare Bundibugyo strain linked to recent outbreaks in the Democratic Republic of the Congo. In IPL cricket, Royal Challengers Bangalore stormed into the final, beating Gujarat Titans by 92 runs in the qualifier one match at Dharamshala last night. Chasing a mammoth target of 255 runs, Gujarat Titans were all out for 162 with 3 balls to spare. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वीं द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। इसराइल की सेना ने कहा गाजा में हमास का नया सैन्य प्रमुख और 7 अक्टूबर 2023 के हमलों का मुख्य षड्यंत्रकर्ता मोहम्मद ओदे मार गिराया गया है। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है और ग्रैंडमास्टर इनियान पन्नीर सेल्वम ने श्रीलंका में आयोजित राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में रैपिड और ब्लिट्स दोनों खिताब जीतकर दोहरा स्वर्ण पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वीं द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि CEPA व्यापार और निवेश संबंधों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
2: सरकार का प्रयास है कि चीजों को आसान बनाया जाए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी। इससे निवेश के नए अवसर भी खुलेंगे। हमने बहुत ही अच्छा और संतुलित समझौता किया है।
1: इसराइल की सेना ने कहा है कि गाजा में हमास के नए सैन्य प्रमुख और 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के मुख्य षड्यंत्रकर्ता मोहम्मद ओदेह को मार गिराया गया है। एक रिपोर्ट।
3: इसराइल ने कहा है कि यह अभियान इसराइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इसराइल काट्स के आदेश पर चलाया गया था। रिपीट, इसराइल ने ये आदेश पर 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के दौरान कई इसराइली नागरिकों और सैनिकों की हत्या, अपहरण और घायल होने में शामिल होने का आरोप लगाया। ओधे हाल ही में अजेद्दीन अल हदाद के स्थान पर सैन्य प्रमुख बना था। अजेद्दीन अल हदाद इससे पहले इसराइली हमले में मारा गया था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल 7 अक्टूबर के हमलों में शामिल सभी लोगों को निशाना बनाना जारी रखेगा। इस बीच इसराइल ने दक्षिण लेबनान में बड़े हवाई हमले कर टायर और मर्जियून जिले को निशाना बनाया है। इन हमलों में कल 31 लोग मारे गए और 40 अन्य घायल हो गए। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। एक रिपोर्ट।
4: श्री

0: ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक है। श्री ग्राहम ने पाकिस्तान से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अब्राहम समझौते में शामिल होने के आह्वान पर स्पष्ट प्रतिक्रिया देने का भी आग्रह किया। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक टीवी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार करने के बाद आई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी भी ऐसे समझौते का समर्थन नहीं करेगा जो देश की मूलभूत विचारधाराओं के खिलाफ हो। श्री ट्रंप ने हाल ही में ईरान के साथ वार्ता से जुड़े व्यापक पश्चिम एशिया शांति प्रयासों के हिस्से के रूप में पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, जॉर्डन, बहरीन और तुर्की सहित कई मुस्लिम बहुल देशों से अब्राहम समझौते में शामिल होने का आह्वान किया था। वर्ष 2020 में हस्ताक्षरित अब्राहम समझौता अमरीका समर्थित समझौता है। इसके अंतर्गत इसराइल और कई अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाया था। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में नासा ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: दक्षिण अफ्रीका में रूसी दूतावास ने कहा है कि रूस के वैज्ञानिकों ने इबोला वायरस के सबसे नए स्ट्रेन के खिलाफ एक नई वैक्सीन तैयार की है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको ने इस उपलब्धि की घोषणा की। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह वैक्सीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में हाल ही में फैले दुर्लभ बुंडी बुग्यो स्ट्रेन के खिलाफ भी असरदार हो सकती है। एक रिपोर्ट।
3: विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस महीने की 17 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमों के अंतर्गत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया। इधर देश में हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने भी विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद एयरलाइन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कहा कि युगांडा और कांगो से आने जाने वाली उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस के लिए ये अनिवार्य है कि वो यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे स्वघोषणा पत्र अनिवार्य रूप से भरवाएं। इबोला एक गंभीर वायरल बीमारी है जिसमें मृत्यु दर काफी अधिक होती है। फिलहाल बुंडी बुग्यो स्ट्रेन के लिए विशेष रूप से तैयार की गई कोई भी आधिकारिक रूप से स्वीकृत वैक्सीन या उपचार उपलब्ध नहीं है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: पूर्वी लेबनन की बेका घाटी में स्थित मशगारा गांव पर हुए इजरायली हवाई हमले में 12 लोग मारे गए हैं। ये हमले लेबनान और इसराइल के सैन्य प्रतिनिधिमंडलों की अमरीका में होने वाली बैठक से 3 दिन पहले हुए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू द्वारा हिजबुल्ला के खिलाफ और अधिक आक्रामक हमले करने के ऐलान के बाद ये कार्रवाई की गई है। इसराइल की सेना ने हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन कहा है कि वो पूर्वी लेबनन में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंडमास्टर इनियान पन्नीरसेल्वम ने श्रीलंका में रैपिड और ब्लिट्स दोनों खिताब जीतकर 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। इनियान ने प्रत्येक प्रारूप में 6.5 अंक हासिल करके दोनों वर्गों में चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। रैपिड स्पर्धा में ग्रैंडमास्टर श्रीहरि ने रजत और जीएम मित्राभा ने कांस्य पदक हासिल किया। ब्लिट्स प्रतियोगिता में ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा ने रजत और श्रीहरि ने कांस्य पदक जीता। मित्राभा ने क्लासिकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया, जबकि श्रीलंका के रानिंदु लियानागे ने रजत और श्रीहरि ने कांस्य पदक हासिल किया। पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने इंडोनेशिया की पुत्री कुसुमा वरदानी को 21-17, 21-18 से हराया। प्री

सवाल का जवाब जो धुन मैंने अभी आपको सुनाई उसके बारे में इन्होंने लिखा है कि फिल्म कुर्बानी का ये म्यूजिक लग रहा है। है नहीं, गलत जवाब है। थोड़ा सा और सोचिए, अभी फिर से सुनवाती हूँ आपको ये म्यूजिक पीस और उम्मीद है मुझे कि आप जल्द ही पहचान जाएंगे। रिश्ता चाहे इस धरती पर कोई भी हो, सबका सिर्फ एक ही पासवर्ड है। क्या बता सकते हैं भाई? बोधराज खोरवाल जी कह रहे हैं कि भरोसा है वो पासवर्ड, और मुझे भी लगता है कि बिल्कुल सही बात है। कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश इनके साथ शामिल हैं इस मैसेज में। और इसी के साथ चलते हैं एक और मैसेज की तरफ। सतीश अनेजा जी ने भेज दिया है हर रोज की तरह अपना खूबसूरत सा शेर लिखकर। लिखते हैं, पुरखलूस सलाम नाज बहना जी, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं, बेशुमार मोहब्बतें और दुआएं देते हैं। लिखा है आगे कि हर एक सजदा मकबूले खुदा हो जाए, हर एक सजदा मकबूले खुदा हो जाए, तेरी दुआओं के संग रब की रजा हो जाए। मिले आज तुम्हें वो खुशियां प्यारी बहना नाज, हजारों सालों तक गम तुझसे खफा हो जाए। और इसी के साथ अपनी फरमाइश भी लिख भेजी है। चंडीगढ़ से ये मैसेज आया है। सतीश अनेजा जी के साथ बिमला अनेजा भी शामिल हैं इस मैसेज में। तो चलिए मैं नोट करूं वो सभी नाम जिन्हों जो लगातार भेज रहे हैं आज के सवाल का सही जवाब। चलिए एक बार म्यूजिक पीस और सुना देती हूँ, फिर सुनेंगे अगली फरमाइश। बहुत ही आइकॉनिक सॉन्ग है, उम्मीद है ज्यादातर लोगों ने पहचान लिया है और जवाब लगातार आ भी रहे हैं। तो चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। और इसकी फरमाइश हमारे पास आई है मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार की ओर से खरगोन सनावद एमपी बोडाना से ये फरमाइश आई है। इसके अलावा सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप भी इस फरमाइश में शामिल हैं भाई।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

मुसीबत तो एहसास वालों की है। सुप्रभात। ये खूबसूरत मैसेज आया है विजय नारंग जी की ओर से, नन्हे पहलवान बाजार सीताराम से, दिल्ली से, और साथ ही भेजा है आज के सवाल का जवाब भी। एक और मैसेज आया है, हर मुसीबत के देखिए दो समाधान होते हैं, भाग लो या भाग जाओ। भाग लो या भाग जाओ, चॉइस आपकी है, जो भी आपको पसंद हो। सत प्रकाश सनोठिया जी ने ये राय दी है, रोहिणी दिल्ली से। और बहुत ही सारे मैसेजेस आप लोग कर रहे हैं लगातार, जिन्हें देखकर खुशी तो हो रही है लेकिन थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्योंकि अगर मैसेज शामिल नहीं हो पाए सारे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं भी है, तो आप नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं। जैसा नाम है नाज तुम्हारा, वैसे नाज नहीं है तुम्हारे, इसी बात ने जीता मन हम सबका, घोला शहद श्रोता के मनों पर अपनी मधुर वाणी का। एस के खन्ना साहब ये लिख रहे हैं गुरुग्राम से, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही लिखा है कि हम तो आज उत्तर नहीं देंगे क्योंकि आप शामिल ही नहीं करते। अब देखिए, आपने आज ही उत्तर नहीं देने का फैसला किया और मैंने आपका मैसेज शामिल कर लिया, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है आपका नाम तो मैं कई बार पढ़ चुकी हूं जनाब, कहीं कोई ट्रिक तो नहीं। बोधराज खोरवाल साहब का ये मैसेज उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी के साथ, भेज दीजिए। चलिए माफी मांग लेती हूँ, अब तो मैसेज शामिल कर लिया, जल्दी से भेज दीजिए जवाब। चलिए अगला मैसेज शामिल करेंगे हम। एक और नाराजगी आई है भाई कि आपने आज तक मैसेज शामिल नहीं किया हमारा। तोहमत है ये तो। नवाब अहमद भारती साहब का ये मैसेज है, तो माफी के साथ मैंने आपका मैसेज शामिल कर लिया है। और साथ ही ये भी लिख दिया है कि भाई हमारी समझ में तो नहीं आया कि ये म्यूजिक ट्रैक किस गीत का हिस्सा है, किस गीत की शुरुआती धुन है। वाह क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, लेकिन उम्मीद है अब आप नाराज नहीं होंगे। और सोचता हूँ आज पर्दा हटा दूं इस राज से, सोचता हूँ आज पर्दा हटा दूं इस राज से, दिल का मेल बॉक्स में रौनक है मैडम नाज से। क्या बात है सर, बहुत अच्छा शेर आपने लिखा है, लेकिन ऐसा है नहीं, बाकी सभी आरजेज भी बहुत ही अच्छी और बढ़िया प्रेजेंटेशन देते हैं मेरी तरह, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मैसेज आया है गगनदीप थांदी जी की ओर से, लिखते हैं बहुत देर से दर पर आंखें लगी थी हुजूर, आते आते बहुत देर कर दी, मसीहा मेरे तूने बीमार गम की दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। देर हो गई उसके लिए माफी, लेकिन अभी तो मैसेज शामिल हो गया है। चलिए जल्दी से एक और मैसेज शामिल कर लेते हैं, फिर सुनेंगे अगली फरमाइश, लेकिन माफ कीजिए घड़ी तो बहुत तेजी से भाग रही है। अगला मैसेज शामिल करेंगे और उसके बाद जानेंगे आज के सवाल का सही जवाब और नाम भी। तो नाज जी आदाब नमस्कार, ये आवाज नहीं कोई सुहाना सा ख्वाब है, खुदा की फुर्सत का सबसे हसी जवाब है, बनाए रखना इस आवाज को नाज जी हमेशा, क्योंकि इस शोर भरी दुनिया में यही नायाब है। आपकी आवाज का जादू कुछ ऐसा असर करता है कि खामोश सा दिल भी धीमे से धड़कता है, लहजे में जो छुपा है एक मासूम सा नाज, उसी सादगी पर दिल बार बार मरता है, जब बोलती हो आप तो समा ठहर जाता है, हवाओं का रुख भी जैसे बदल जाता है, मिश्री सी घुल जाती है फिजाओं में, हर तरफ हर कड़वा लम्हा पल भर में सुधर जाता है। उफ, सच में सर कहीं रो ही ना दूं मैं, इतना खूबसूरत मैसेज, इतनी तारीफ। उफ, पारसमढ़ी रेडियो श्रोता क्लब की ओर से ये मैसेज आया है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से, बवलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार जी की ओर से, और इसके इनके साथ ही दिनेश चौहान, बाबूराम जयपाल और खुदा बख्श खलीफा साहब भी, जो खुद को रेडियो दीवाना कहते हैं, शामिल हैं इस मैसेज में, इस खूबसूरत से मैसेज में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। चलिए अब इस घड़ी को तो मैं नहीं रोक सकती आगे बढ़ने से, तो मैं ही बढ़ जाती हूँ आगे और बता देती हूँ आपको आज के सवाल का जवाब। तो दोस्तों ये म्यूजिक पीस जो आपने बार बार सुना आज, वो हिस्सा है एक बेहद खूबसूरत गीत का, भोर भये पनघट पे, लता मंगेशकर जी की सुरीली और सूदिंग आवाज इस गाने के साथ आप सुनते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का सुपर हिट म्यूजिक भी है इसमें। राग

जी हाँ, बिल्कुल यही म्यूजिक पीस है वो जिसे आप सुन रहे हैं बार बार और पहचान भी रहे हैं, सही बोल भी लिखकर भेज रहे हैं और साथ में भेज रहे हैं बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेज। वो आराम से हैं जो पत्थर के हैं,

भैरवी पर बेस्ड इस गाने के बोल निकले हैं आनंद बख्शी साहब की कलम से। सुबह के समय जब आप इस गाने को सुनते हैं ना, तो बस इसी में खो जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है हमेशा। और आप महसूस करते हैं कि कोई अलहड़, कोई बहुत कम उम्र की आवाज इसे गा रही है। लेकिन आपको बता दूं कि जब लता जी ने ये गाना रिकॉर्ड किया था, तब उनकी उम्र 50 साल के आसपास थी। बस यही तो जादू था लता जी का कि जीनत अमान जी, जो उस समय सिर्फ 26 साल की थी, उन पर वो आवाज बिल्कुल सटीक बैठी। प्यारे लाल साहब एक इंटरव्यू में बताते हैं कि इस गाने के लिए लक्ष्मीकांत जी के साथ उन्होंने एक खास रिदम पैटर्न तैयार किया था, जिसमें एक अनोखा वेस्टर्न और क्लासिकल फ्यूजन आप सुनते हैं। मटके के पानी की खनक के साथ घुंघरुओं की थाप को बड़े कमाल ढंग से उन्होंने मिक्स किया और पेश किया हमें ये बेहतरीन गाना, जिसे आप सभी ने बिल्कुल ठीक पहचाना। और ये रहे वो सभी नाम, सभी तो नहीं कहूंगी वरना आप फिर नाराज हो जाएंगे। सत प्रकाश

गाना जिसे आप सभी ने बिल्कुल ठीक पहचाना, और ये रहे वो सभी नाम, सभी तो नहीं कहूंगी वरना आप फिर नाराज हो जाएंगे। सत प्रकाश सनोठिया रोहिणी से, मेहर अरोड़ा श्री गंगानगर राजस्थान से, मधुबाला तिलंग कोटला दिल्ली से, सईद अब्बासी चौखुंटी बुलंदशहर से, अनिल मोहन पहाड़गंज मुल्तानी टांडा से, राजू मिगलानी दुर्गा कॉलोनी हांसी से, सुमेरा परवीन बुलंदशहर से, पंकज मोहोड अमरावती महाराष्ट्र से, सुरेश गगनेजा जलालाबाद वेस्ट से, विजय नारंग दिल्ली से, सुनील पाठक अनार कली बाजार जगराओ से, बबलेश पवार गांधी चौक बाड़मेर से, चिन्मय महतो जमशेदपुर से, जयराम खोरवाल उत्तम नगर दिल्ली से। और दोस्तों मुझे मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है कि अभी भी बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो शामिल नहीं हो पाए हैं। चलिए कुछ वक्त है हमारे पास, तो जल्दी से उन नामों को भी शामिल करने की कोशिश जरूर कर लेते हैं। तो दिग्दर्शन साहब का भी मैसेज आ गया है सही जवाब के साथ, और फारूक अली खान फैजी फराज फरहीन फरहान फारिया और ताहिरा के साथ भी बिल्कुल सही जवाब आ चुका है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और अपना फरमाइशी गीत भी इन्होंने लिखकर भेजा, लेकिन माफ कीजिएगा आज आपकी फरमाइश पूरी नहीं हो पाएगी वक्त की कमी के चलते। और अगला मैसेज मनोहर लाल गांधी जी का, विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से। और कौन कौन कर रहा है मैसेज, चारू जटोलिया जी का अभी मैसेज आया है कि देखिए आप हमारा ईमेल पढ़ते तो हो नहीं पर फिर भी हमें आपका एपिसोड बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। राजेंद्र जटोलिया जी ने ये मैसेज लिखा है दिल्ली नागलोई से। और इसके साथ ही एक और मैसेज, हम दुआ करते हैं कि आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें और ऐसी गर्मी से बचें और हल्के कपड़े पहने और ठंडा पानी पिए। जैन मंदिर कुरावली से ये मैसेज राशिद हुसैन अंसारी साहब का। चलिए दोस्तों आज के लिए दिल का मेल बॉक्स में यहीं तक था आपका और मेरा सफर, लेकिन आगे बढ़ेंगे, ये गाना सुनेंगे, फिर समाचार सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में, और ठीक 11:10 पर तस्वीर में फिर मिलेंगे, ठीक है ना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में यात्रा करके लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। मंत्रालय ने कहा कि वो सतर्क और पूरी तरह से तैयार है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉ मनोज शिरूरे को भी गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबसे बड़े लक्ष्यों को भी सतत प्रयास, धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम को साझा करते हुए कहा कि देश के लोग इसी भावना से प्रेरित होकर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। इसराइल के हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान में 31 लोग मारे गए और 40 अन्य घायल हो गए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसराइल और हिजबुल्ला के बीच बढ़ते तनाव के बीच कल कई कस्बों और गांवों को निशाना बनाकर हमले किए गए। अधिकारियों ने बताया कि सबसे घातक हमला दक्षिणी शहर टायर के पास बुर्ज अल शिमाली इलाके में हुआ, जहां 14 लोगों की जान चली गई और 16 अन्य घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज मिला जुला रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 40 अंक बढ़कर 76,050 पर था, जबकि निफ्टी 20 अंक की वृद्धि के साथ 23,932 पर था।

0: निदा फाजली साहब ने फरमाया है कि अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। और हवाओं का रुख आज जरा ईस्ट की ओर है, क्योंकि तस्वीर में आज हम उधर ही चल रहे हैं। नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर हैं आप मेरे यानी नाज के साथ। तो एक हिंट तो आपको मिल ही गया है कि आज हम चल रहे हैं पूर्वी भारत की ओर। जगह कौन सी है इसके बारे में एक हिंट और मैं आपको देती हूं कि वहां सुनाई देती है आपको टाइगर की दहाड़, और घने जंगल सुनाते हैं अपनी कहानियां। तो बूझिए और लिख भेजिए जगह का नाम तस्वीर की प्लेलिस्ट में शामिल इस पहले गाने के खत्म होने से पहले।
1: लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होय गवा सारा चौपट मोरा रोजगार।

भाई दो मैसेज आए हमारे पास जिन्होंने नाम को गेस करने की कोशिश की कि आज कहाँ की तस्वीर आप देखने और सुनने वाले हैं। अनु बरजाते जी और कृष्ण कुमार गुप्ता जी ने किया मैसेज, लेकिन अफसोस के साथ मुझे सूचित करना पड़ रहा है कि आप दोनों का ही जवाब गलत है। तो दादा अगर अखन तक नहीं बुझ ले तो सुन ले, गलत प्रोनाउंस हुआ क्या, उसके लिए माफी। तस्वीर में आज हम चल रहे हैं पूर्वी भारत के झारखंड राज्य और यहीं के बेतला नेशनल पार्क। जी हाँ, नेशनल पार्क ही है ये, आपने सही गेस किया, लेकिन नेशनल पार्क का नाम थोड़ा सा गलत हो गया। चलिए फिर पहुंचे हम बेतला, उससे पहले कर लें कुछ तैयारियां। अरे भाई ट्रेन से जाना है, बाय प्लेन जाना है या फिर बाय रोड जाना है, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। बट अगर मेरी लेंगे एडवाइस तो सेट कीजिए अपना बजट और पहले ही बुक कर लीजिए रांची एयरपोर्ट का टिकट, जो बेतला से लगभग 170 किलोमीटर के आसपास आपको पड़ेगा। सीधी फ्लाइट आपको यहां के लिए देश के हर बड़े शहर से मिल जाएगी और फिर टैक्सी या बस तो अवेलेबल है ही। दूसरा ऑप्शन आपके पास गया एयरपोर्ट का भी है, जिसकी दूरी बेतला से है करीब 190 किलोमीटर के आसपास। और यहां से भी आप आराम से बेतला पहुंच सकते हैं। बाय ट्रेन और बाय रोड क्या है रास्ता, बताऊंगी इस गाने के बाद।

तो बेतला नेशनल पार्क के लिए निकलना है और ट्रेन से जाना है, तो क्यों टाइम गवाना है? सीधा ऑनलाइन जाके टिकट बुक करना है बरवा डीह जंक्शन का, जहां से सिर्फ 12 से 15 किलोमीटर के सफर के बाद आप पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पर। एक और ऑप्शन यहां पर भी है आपके लिए, और वो है डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन, जिसकी दूरी बेतला नेशनल पार्क से आपको पड़ेगी कुछ 25 किलोमीटर के आसपास। और बाहर निकलते ही रेगुलर तौर पर मिलती रहेंगी लोकल बसें, ऑटो या फिर प्राइवेट कैब भी। बाय रोड जहां तक जाने का मसला है, तो पहले पहुंचना होगा रांची और फिर पकड़ना होगा NH 75। लातेहार होते हुए आराम से आप बेतला पहुंच जाएंगे। और कार से इस सफर में आपको लगेगा सिर्फ 4 घंटों का समय। पटना से जाएंगे तो औरंगाबाद होते हुए NH 98 पकड़ेंगे, जहां से डिस्टेंस आपको पड़ेगा बेतला नेशनल पार्क तक का करीब 260 किलोमीटर। और जनाब, जब बैग पैक कर ही लिए हैं, मूड बन ही गया है, तो सुनिए एक और गाना और जल्दी से वॉशरूम वगैरह होकर आ जाइए, क्योंकि इसके बाद हमारी गाड़ी सीधा बेतला नेशनल पार्क।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर्सनल लोन ऑफर
5: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
4: फ्री ट्रिप टू दुबई
5: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
6: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
5: तो क्या करूं?
6: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
5: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
6: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तस्वीर चल रहा है प्रोग्राम जहां निकले हैं आप मेरे यानी नाज के साथ बेतला नेशनल पार्क की सैर पर, जो कि झारखंड राज्य के लातेहार और पलामू जिलों में मौजूद राज्य का इकलौता यानी एकमात्र नेशनल पार्क है। मशहूर पलामू टाइगर रिजर्व का ये एक मुख्य हिस्सा है और भारत वन्य जीव संरक्षण और सफारी के नजरिए से

बेहद खूबसूरत और हिस्टोरिकल प्लेस भी है। लगभग 1129.93 वर्ग किलोमीटर इसका दायरा है, जिसमें से टूरिस्ट बफर जोन है सिर्फ 53 वर्ग किलोमीटर। हरे भरे जंगल, पहाड़ियां, घाटियां और झरने आपको यहां पर मिलेंगे और साथ ही एक शांत आदिवासी गांव की सैर का मौका भी आप पा लेंगे। जानकारी आपको यहां पर ये जरूर होनी चाहिए कि बेतला नेशनल पार्क आपके लिए 1 अक्टूबर से 30 जून तक खुला रहता है, क्योंकि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक मॉनसून के चलते इसे पर्यटकों के लिए बंद रखा जाता है। बेस्ट टाइम अगर आप पूछेंगे मुझसे तो मैं आपको कहूंगी अक्टूबर से अप्रैल के बीच, क्योंकि इस दौरान मौसम यहाँ का बहुत सुहाना होता है। लेकिन जनाब, ये जो अगला गाना आप सुनने वाले हैं, इसे आप कभी भी और कहीं भी सुन सकते हैं। बस थोड़ी सी जगह आपके आसपास होनी चाहिए ताकि आप उठें और उठकर थोड़ा बहुत मटक सकें।

चलिए डांस हो गया तो अब गौर फरमाइएगा। बेतला नेशनल पार्क भारत के उन पहले राष्ट्रीय उद्यानों में शामिल है जिन्हें 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। फिर साल 1986 में इस जगह को राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क का दर्जा भी मिल गया। यहाँ के जंगलों में आपको दिखाई पड़ती है वनस्पतियों की एक विशाल श्रृंखला जिसमें साल और बांस मेन है। साथ ही कई मेडिसिनल प्लांट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। उत्तरी कोयल नदी और उसकी कुछ सहायक नदियां भी इस पार्क के उत्तरी भाग से होकर गुजरती हैं और जिससे बनते हैं घास के

मैदान जिन पर नंगे पांव चलते हुए आपके शरीर को मिलती है ठंडक और मन को मिलता है सुकून। पार्क के अंदर घूमने के लिए गाइड के साथ जीप सफारी आपके लिए मौजूद है और वन्य जीवों को देखने के लिए जगह जगह वॉच टावर्स भी बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ के किन किन वन्य जीवों के होंगे आपको दर्शन जानेंगे, लेकिन पहले ये ट्रैक सुनेंगे और थोड़ी सांस लेते हुए पियेंगे ठंडा पानी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

तस्वीर है प्रोग्राम का नाम, जहां आप मेरे यानी नाज के साथ निकले हैं बेतला नेशनल पार्क की सैर पर। अच्छा बेतला, ये नाम भी बड़ा खास है, कैसे? चलिए बताती हूँ। ध्यान देंगे इस नाम की इंग्लिश में स्पेलिंग पर, जो कि होती है BETLA, और जिसमें बी फॉर होता है बाइसन यानी कि गौर, ई फॉर एलिफेंट यानी हाथी, टी फॉर होता है टाइगर यानी बाघ, एल से होता है लेपर्ड यानी तेंदुआ, और लास्ट में ए यानी एक्सिस, जिसे चीतल या हिरण के लिए माना जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बेतला नेशनल पार्क में आप सिर्फ इन्हीं कुछ जानवरों को देख पाएंगे। इनके अलावा आपको यहाँ पर स्लॉथ बेयर, जिन्हें सुस्त भालू कहा जाता है, अच्छी खासी तादाद में दिखेंगे। चित्तीदार और सांभर दोनों तरह के हिरण आपको यहाँ घूमते फिरते मिल जाएंगे। इनके अलावा बारहसिंगा और काकड़, जिन्हें भौंकने वाला हिरण भी कहा जाता है, वो भी आपको यहाँ बेतला नेशनल पार्क में नजर आएंगे। ब्लू बिल यानी नील गाय भी पार्क के खुले मैदानी इलाकों में नजर आती हैं, और इनके साथ ही घने पेड़ों की डाली से झूलते लंगूरों और शरारती बंदरों की तो आपको यहाँ पर भरमार ही मिलेगी। बर्ड वॉचर और इनके लवर हैं आप अगर, तो भी बेतला नेशनल पार्क आपके लिए है। कैसे जानेंगे आफ्टर दिस एक और गाना मस्ती वाला।

हाँ जी, तो बर्ड वॉचिंग की हो रही थी बात इस गाने से पहले, तो चलिए उसी बात को आगे बढ़ा लेते हैं। बात भाई सीधी सी है कि रंग बिरंगे चहकते और गुनगुनाते करीब 170 से भी ज्यादा तरह के पक्षी आपको यहाँ नजर आएंगे। कहाँ? अरे यहीं बेतला नेशनल पार्क में, जहाँ की सैर आप कर रहे हैं मेरे साथ। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर हैं आप और तस्वीर है प्रोग्राम का नाम, अब तो याद आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी मेन प्रजातियां हैं यहाँ पक्षियों की, जिनकी पिक्चर्स आप जरूर क्लिक करना चाहेंगे अपने फोन में। तो सबसे पहले इस लिस्ट में आता है मोर, जो बहुत बड़ी तादाद में आपको अपनी सफारी के दौरान चहचहाते और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है कि नाचते हुए भी दिख जाए। इसके बाद हॉर्नबिल, जो अपनी अजीबोगरीब और बड़ी चोंच के लिए मशहूर है, वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। फिर जंगली मुर्गे, चील, बाज और उल्लू जैसे पक्षियों की कमी तो यहाँ है नहीं। कमलदहा नदी और उत्तर कोयल नदी की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको कुछ वाटर बर्ड्स जैसे बगुले, बत्तख और यूरेशियन कूट जैसे प्रवासी पक्षी भी नजर आ जाएंगे। तो है ना एकदम हेवन वाली फीलिंग, यही इसी धरती पर यकीनन यही महसूस करेंगे आप बेतला नेशनल पार्क आकर कि वाकई कुदरत ने क्या गजब कर डाला है।

मैं डॉक्टर ऋचा सूद, सीबीएसई नेशनल अवार्डी प्रिंसिपल और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एथलीट हूँ। 15 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, जिसमें की 4 स्वर्ण पदक भी हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा होना एक बहुत बड़े गौरव की बात है और हम सभी श्रोताओं के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि आकाशवाणी ने, मुझे लगता है कि हर किसी के जीवन के हर छोटे बड़े अवसर पर, हर छोटे बड़े पड़ाव पर साथ दिया है और हमें संगीत से जोड़कर जिंदा रखा है। अगर जिंदगी में संगीत की मिठास है तो वो आकाशवाणी की वजह से है, वरना शायद हम सब संगीत को जानते ही ना होते। आकाशवाणी ने हर उस मौके पर, हर उस अवसर पर, हर उस उत्सव पर हमें जिंदा रखा है एक लाइफ लाइन के जैसे, कि जैसे मान लीजिए रक्षाबंधन है, दिवाली है, या भाई दूज है, या नया वर्ष है, या किसी का जन्मदिन है। कोई भी ऐसा उत्सव जिसमें आकाशवाणी ने हमारा साथ ना दिया हो, ऐसा नहीं है। चाहे रोमांस हो या ब्रेकअप हो, पढ़ाई हो या अकेलापन हो, पहाड़ों पर हो, मैदानों पर हो, या घर में हो, और आजकल तो कार में भी आकाशवाणी हमारे साथ ही चलता है। मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन ने, जो 70-80 के दशक के लोग हैं, उन्होंने तो संगीत आकाशवाणी से ही सुना है और आज भी हमारा पुराना नाता है। मुझे लगता है कि ये बताना बहुत जरूरी है कि हम भाई बहनों में आकाशवाणी पर गीत सुनने के लिए ट्रांजिस्टर को लेने में, चलाने में और छिपाने में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। तो एक बचपन में जो खेल जैसा एक नाता है, वो भी है हमारा आकाशवाणी से।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: देखिए पार्क काफी बड़ा है और एक प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ एरिया भी है ये, तो अंदर आपको जगह जगह पर रेस्टोरेंट या कैफे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन सरकारी वन विभाग की कैंटीन या फिर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में आप जरूर पेट पूजा कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर और बता दूं आपको कि पार्क के अंदर किसी भी तरह का खाना ले जाने की सख्त सख्त मनाही है, और ऐसा आपकी ही सेफ्टी के लिए है। भाई खाना आपके साथ होगा तो जानवर भी तो साथ आना चाहेंगे आपके, है ना? तो सजेशन मेरा आपको यही है कि पार्क के मेन गेट के बाहर जो कुछ खाना है खा लीजिए, और फिर भी अंदर भूख लग जाए तो सीधा वन विभाग की कैंटीन का रुख कर लीजिए। हाँ, लेकिन पानी की बोतल अपने साथ जरूर रखिए, चाहे आप कहीं पर भी हों। और फिर पार्क के बाद बेतला में जब आप घूमने निकलेंगे तो आपको झारखंड की लोकल कुजीन जरूर टेस्ट करनी चाहिए। धुसका खाइए, जो बेसिकली चावल और चने की दाल का बना एक डीप फ्राइड स्नैक है, और इसके साथ ही आपको मिलेगी मडुआ यानी रागी की रोटी। और नॉनवेज के शौकीन अगर आप हैं तो आपके लिए रहेगी एकदम स्पेशल चिकन और मटन करी। पार्क के अंदर सरकारी कैंटीन में मिलेगा आपको एकदम गर्मा गर्म घर का खाना।

0: थालियों के कई ऑप्शंस रहेंगे और फास्ट फूड की भी यहाँ कोई कमी नहीं है। और इसी के साथ मुझे यानी नाज को आपसे विदा लेनी होगी, क्योंकि तस्वीर की आज की समय सीमा यहीं पर खत्म होगी। मिलूंगी आपसे फिर किसी नए सफर की नई तस्वीर के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, गुड बाय और नमस्कार।
1: तो हम चलते हैं।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआई प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज टोरंटो में कनाडा में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में आए आर्थिक बदलावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के माध्यम से व्यापार, निवेश, नवाचार और लोगों के बीच आपसी सहयोग के क्षेत्रों में उभर रहे अपार अवसरों पर भी जोर दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज महाराष्ट्र के अमरावती, वर्धा और चंद्रपुर जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। नागपुर, गढ़चिरौली और अकोला जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस वर्ष मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था में स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग का अभ्यास अनिवार्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आज अपने कैबिनेट की बैठक करेंगे। पूर्व राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड सहित कैबिनेट के सभी सदस्यों के इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार इस बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और उनके शीर्ष अधिकारी विदेशी और घरेलू दोनों ही मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब ईरान ने अमरीका पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक का सेंसेक्स 69 अंक बढ़कर 76,079 पर था। निफ्टी 50 27 अंक की वृद्धि के साथ 1,941 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. The Supreme

0: आंगन।
1: कभी कभी जिंदगी हमें बहुत कुछ दे देती है लेकिन हम उसे महसूस करना भूल जाते हैं, और कभी कभी छोटी सी खुशी ही दिल को पूरा भर देती है। शायद इसीलिए खुश रहने के लिए किसी बड़ी वजह की नहीं, बस थोड़े से एहसास की जरूरत होती है। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं घर आंगन, एक ऐसी जगह जहां बात होती है उन एहसासों की जो शब्दों में नहीं रिश्तों में बसते हैं, जहां हर कहानी किसी न किसी अपने से जुड़ जाती है। इन्हीं खूबसूरत एहसासों के साथ हम आ गए हैं आपके बीच 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड पर। साथ ही आप हमें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी 366.3 मीटर पर भी। आज इस सफर में आपके साथ मैं हूं, आपकी अपनी रेडियो हम सफर सोनाली। तो आइए कुछ पल अपने लिए चुरा लीजिए और मेरे साथ चलिए अपने ही घर आंगन में।

जी हाँ, आप बेगाने थोड़ी ना हैं, आप तो हमारे अपने हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ ये जो अपनापन है ये हम जोड़ पाते हैं एक ही माध्यम से, जो है हमारा ईमेल आईडी। जी हाँ, वो है fmgoldga@gmail.com। और आपने ये जो गाना सुना ये था फिल्म आंसू बन गए फूल से, और इसमें स्वर थे किशोर कुमार के साथ आशा भोसले की। जी हाँ श्रोताओं, समस्या का समाधान एक ही है, क्षमा मांग लो या क्षमा कर दो, है ना। देखिए, ये स्वामी विवेकानंद जी के विचार हैं, और आप भी मानेंगे कि जीवन में कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो किसी बड़ी वजह से नहीं बल्कि छोटे छोटे अहम और अनकही बातों से दूर हो जाते हैं। कई बार हम सही तो होते हैं मगर संबंध हार जाते हैं। ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद का ये विचार हमें बहुत सरल लेकिन गहरी सीख देता है। समस्या का समाधान, जैसे कि हमने आपको बताया कि या तो आप क्षमा कर ली या फिर क्षमा मांग ली। क्षमा केवल दूसरे व्यक्ति को नहीं स्वयं को भी शांति देती है, क्योंकि मन में जो जमा नाराजगी है ना, वो धीरे धीरे रिश्तों की मिठास को कम कर देती है। कभी एक कदम झुक जाना और एक शब्द माफ कीजिए कह देना या किसी को दिल से क्षमा कर देना कई टूटते रिश्तों को फिर से जोड़ सकता है। आखिर रिश्ते जीतने से अधिक महत्वपूर्ण होता है उन्हें सहज कर रखना, है ना।

फिल्म गुड्डी में आप सुन रहे थे वाणी जयराम की आवाज में ये गीत, और इनका साथ दिया था उनके कई साथी कलाकारों ने भी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हम आकाशवाणी के स्थापना के 90 वर्ष को यहाँ पर मना रहे हैं, तो आइए बात करते हैं आकाशवाणी की ही। एक समय था जब सुबह की शुरुआत मोबाइल की घंटियों से नहीं बल्कि आकाशवाणी के संकेत धुन से हुआ करती थी। भोर की शांति में जैसे ही ये मधुर सुनाई देती थी, घर भी धीरे धीरे जागने लगता। रसोई में चाय चढ़ती रहती, अखबार दरवाजे पर गिरता, और इसी बीच आकाशवाणी से प्रसारित वंदनवार का भक्ति संगीत सुबह को एक अलग ही आत्मीयता से भर देता था। इसके बाद समाचार प्रभात सुनना कई परिवारों की दिनचर्या का हिस्सा हुआ करता था। देश दुनिया की खबरें सुनाने वाली गंभीर और संतुलित आवाजें लोगों के मन में बस जाती थी। उस दौर में ना बहुत से ऐसे समाचार वाचक हुए जैसे मेलविन डी मेलो, देवकी नंदन पांडे, सुरजीत सेन, लतिका रत्नम और विनोद कश्यप। ये समाचार वाचकों की आवाजें ना घर घर में पहचानी जाती थी, और ना लोग उन्हें देखे बिना भी जैसे इनकी आवाज के जरिए ही उन्हें पहचान लेते थे। सुबह 7:45 बजे प्रसारित होने वाला शास्त्रीय संगीत का लोकप्रिय कार्यक्रम संगीत सरिता भी श्रोताओं की सुबह का अहम हिस्सा था और है, जो आज भी अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। भारतीय शास्त्रीय संगीत को सहज ढंग से समझने वाला यह कार्यक्रम पीढ़ियों से संगीत प्रेमियों के बीच लोकप्रिय रहा है। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात है, उस दौर में ही नहीं आज भी कई लोग अपनी घड़ियों का जो समय है ना वह आकाशवाणी के समय संकेत और समाचारों के प्रसारण से मिलाते हैं। आकाशवाणी की समयबद्धता पर लोगों का भरोसा आज भी वैसा ही बना हुआ है। कई घरों में बच्चे स्कूल की तैयारी करते हुए रेडियो सुनते थे, तो बुजुर्ग विविध भारती, छाया गीत और हवा महल जैसे कार्यक्रमों की चर्चा किया करते थे। रेडियो केवल सूचना या मनोरंजन का माध्यम नहीं था, यह घर के वातावरण का हिस्सा था। उसकी आवाज में एक अपनापन, एक ठहराव है। आकाशवाणी आज भी नए कलेवर में बहुत से FM चैनल्स और मीडियम वेव चैनल्स के जरिए और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी नित नए कार्यक्रमों के जरिए श्रोताओं के दिलों में राज कर रही है। आज समय बदल गया है, सुबह हमारी तेज हो गई है, लेकिन आकाशवाणी की भी आत्मीय सुबह

आज भी स्मृतियों में उसी गर्माहट के साथ बसी हैं जब घर सचमुच इनकी आवाज से धीरे धीरे जागता था। तो आइए रेडियो की इस सुबह को फिर याद करें और सुने यशुदास की आवाज में ये एक बहुत प्यारा सा गीत।

0: फिल्म हैसियत में आप सुन रहे थे येसुदास की आवाज में ये गीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर कार्यक्रम घर आंगन में, जो आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 MHz पर। आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो हमसफर सोनाली। आज के डिजिटल दौर में ना बच्चों के हाथ में किताबों की जगह धीरे धीरे स्क्रीन ने ले ली है, मानेंगे ना। और जानकारी तो अभी क्लिक पर मिल जाती है, लेकिन किताबें केवल जानकारी नहीं देती थी, वे बच्चों की सोच, कल्पना और संवेदनशीलता को भी आकार देती थी और हैं। देखिए बचपन में पढ़ी गई कहानियां, कविताएं और चित्र, और उनमें जो ये जो पुस्तकें होती थी ना जिनमें चित्र होते थे, उनका असर केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहता था। वे बच्चों को धैर्य सिखाती हैं, नए सपने देखने की प्रेरणा देती हैं और सही गलत को समझने की समझ भी विकसित करती हैं। एक बच्चा जब कहानी पढ़ता है ना, तो वो केवल शब्द नहीं पढ़ रहा होता, बल्कि वो पात्रों के साथ हंसता है, उनके दुख महसूस करता है और धीरे धीरे एक बेहतर इंसान बनना सीखता है। आज जरूरत इस बात की है कि घरों में किताबों के लिए एक छोटा सा कोना फिर से बनाया जाए, मानेंगे ना। और माता पिता यदि बच्चों के साथ बैठकर पढ़ें, उन्हें कहानियां सुनाएं और किताबों को उपहार देने की आदत उनमें विकसित करें, तो पढ़ने का जो संस्कार है ना, वो सहज रूप से बच्चों के जीवन का हिस्सा बन सकता है। क्योंकि बचपन में जो हाथ किताबों तक पहुंचते हैं, वे अक्सर सपनों तक पहुंचने का रास्ता पा लेते हैं। देखिए इसी पर एक छोटी सी कविता आपके सामने रख रही हूं। किताबें सिर्फ कागज नहीं, ये बच्चों की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। किताबें सिर्फ

कागज नहीं, ये बच्चों की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, धीरे धीरे उनकी छोटी दुनिया में नए सपनों के रंग भरती हैं। कभी कहानी बनकर हंसाती हैं, कभी चुपके से सीख दे जाती हैं। जो बच्चे किताबों से दोस्ती करते हैं उनकी सोच हमेशा बड़ी हो जाती है, और जब आपकी सोच बड़ी होती है, आपके जीवन में खुशियाँ होती हैं, तो आपको सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं, आपको कायनात की हर चीज़ बहुत सुंदर लगने लग जाती है ना।

बालिका वधु, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज थी अमित कुमार की। दोस्तों, आपके साथ जो प्यार है, जो एक रिश्ता है, उसकी जो एक हमें झलक है, वो आपकी ईमेल के माध्यम से हमें मिलती है। तो देखिए हमारे साथ जुड़े कौन हैं। जी हाँ, ये हैं नवीन भाटिया जी, मोतीनगर नई दिल्ली से। लिखते हैं, सोनाली जी नमस्कार। दूसरों को उतनी जल्दी माफ कर देना चाहिए जितनी जल्दी हम ईश्वर से खुद के लिए माफी की उम्मीद रखते हैं। बहुत सही बात आपने कही है, और ये बात आपने हमारी उस विचार के लिए के साथ जोड़कर कही है जिससे हमने प्रोग्राम की शुरुआत की थी। धन्यवाद आपका। फिर इसके बाद हमारे साथ कौन जुड़े हैं। जी हाँ, ये है गौरी शंकर जी, और ये नांगलोई से हमारे साथ जुड़े हैं। लिख रहे हैं, सोनाली बेटा राम राम। मुझे याद है रेडियो सुनते हुए करीब 60 साल से ज़्यादा हो गए हैं। एक दिन भी ना सुनी तो अजीब सा लगता है। उस समय विविध भारती और रेडियो सिलोन सुनते थे, आज भी यही आदत है रेडियो सुनने की। आगे आप लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम जानदार पेश होता है और गानों में भी तबीयत खुश हो जाती है। शुक्रिया। तो आपका भी शुक्रिया गौरी शंकर जी हमारे साथ बने रहने के लिए। फिर एक और हमारे पास चिट्ठी आई है, ये आई है सुदर्शन मुखी जी की, इनके साथ अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से। लिख रहे हैं, आदरणीय सोनाली जी सादर प्रणाम, आपको भी मेरा प्रणाम। और आप लिख रहे हैं कि आपको प्रस्तुति बहुत अच्छी लग रही है, अनमोल बातें हैं, रोचक जानकारियां हैं। फिर आप लिखते हैं, दो बहुत अच्छी बातें लिखते हैं कि सबसे बड़ी सीख है अपनों से हार जाना, और तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। फिर एक और चीज़ लिखते हैं कि रिश्ते और विश्वास खराब एक पल में किए जा सकते हैं, जबकि उनको बनाने में ज़िंदगी गुजर जाती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और देखिए, ऐसे ही रिश्ते हमने भी आपके साथ बनाए हैं, तो इस रिश्ते को बनाए रखिएगा और हमारे साथ हर दिन जुड़िएगा, कहाँ, घर आंगन में। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए गर्मी का मौसम आते ही बिजली की बढ़ती खपत और ऊर्जा संरक्षण जैसे विषय फिर से चर्चा में आ जाते हैं, है ना। अब देखिए क्या होता है कि ऐसे समय में सौर ऊर्जा न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी मानी जा रही है, बल्कि आम लोगों के लिए बचत का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बनती जा रही है। इसी दिशा में ना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है एक योजना, जिसकी बात आज हम आपके साथ कर रहे हैं। वो कौन सी है? वो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आइए इसके बारे में आपको और भी बातें बताती हूँ। जैसे देश में ना सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। ये योजना जो है ना, ये भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत संचालित की जा रही है। अब दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत ना घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है, ताकि लोग स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग कर सकें और बिजली खर्च में राहत पा सकें। योजना का लाभ लेने के लिए जो आवेदक है ना, उसका वो भारतीय नागरिक होना जरूरी है, उसके पास खुद का घर होना और एक वैध बिजली कनेक्शन होना बहुत जरूरी चीज है। साथ ही घर की छत सोलर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। और जिन उपभोक्ताओं ने पहले किसी अन्य सरकारी रूफटॉप सोलर सब्सिडी योजना का लाभ लिया है ना, वे इसके लिए पात्र नहीं माने जाते हैं। मतलब आपको जो भी आपको यहाँ पर अगर आवेदन करना है, तो पहली बार ही आवेदन करने वाले होने चाहिए। सरकार के अनुसार इस योजना का उद्देश्य देश के अधिक से अधिक घरों और को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। योजना के लिए आवेदन और विस्तृत जानकारी आप इसकी आधिकारिक पोर्टल पर प्राप्त कर सकते हैं, जो है solarrooftop.pmsuryaghar.gov.in। ये है सोलर रूफटॉप, यानी solarrooftop.pmsuryaghar.gov.in। आज जब बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है ना, ऐसे समय में सौर ऊर्जा जो है भविष्य की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता और एक बहुत अच्छा स्रोत बनती जा रही है। तो क्या है ना कि अब घरों की छतें सिर्फ छांव ही नहीं देंगी, बल्कि ऊर्जा और बचत का नया रास्ता भी बनेंगी।

शैलेंद्र सिंह को आप सुन रही थी फिल्म तराना में। दोस्तों, आज ना डिजिटल तकनीक केवल सुविधा का माध्यम नहीं रही, बल्कि ये शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय और संवाद का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में ना महिलाओं की डिजिटल दुनिया में बढ़ती भागीदारी समाज में एक बहुत सकारात्मक बदलाव का संकेत मानी जा रही है। आज महिलाएं ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, घर से छोटे व्यवसाय चला रही हैं, डिजिटल भुगतान का उपयोग कर रही हैं और डिजिटल माध्यमों के जरिए अपनी प्रतिभा और विचारों को नई पहचान दे रही हैं। कई महिलाएं घर के बने उत्पाद, हस्तशिल्प, कपड़े और खाने की सामग्री का व्यवसाय भी ऑनलाइन माध्यमों से बहुत सफलतापूर्वक कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल साक्षरता के प्रयासों ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ाया है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी कई महिलाएं अब ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल भुगतान का उपयोग कर रही हैं। दोस्तों, सरकार की जो डिजिटल साक्षरता अभियान जैसी जो पहलें हैं और कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC, इनके माध्यम से महिलाओं को डिजिटल सेवाओं और ऑनलाइन प्रक्रियाओं की जानकारी दी जा रही है। आज महिलाएं केवल उपभोक्ता नहीं रही, बल्कि डिजिटल माध्यमों पर कंटेंट निर्माता, उद्यमी और बहुत अच्छी प्रोफेशनल्स के रूप में भी अपनी पहचान बना रही हैं। कई महिलाएं हैं जो ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को शिक्षा दे रही हैं, तो बहुत सी

महिलाएं हैं वो घर से ही काम कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। हालांकि इसके साथ साइबर सुरक्षा और डिजिटल जागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है। इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग, व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के प्रति जागरूक होना आज समय की एक बहुत बड़ी जरूरत है। जब महिलाएं डिजिटल रूप से सशक्त होंगी ना, तब परिवार और समाज दोनों उनसे ज्यादा सशक्त होंगे। तो तकनीक केवल मशीनों की दुनिया नहीं है दोस्तों, यह अवसरों की भी दुनिया है। और आज महिलाएं इस दुनिया में आत्मविश्वास के साथ अपनी जगह बना रही हैं। उन्हें सपनों में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के जो सपने उन्होंने देखे हैं, वो सपने उनकी जिंदगी में खुली आंखों से भी देखे जा रहे हैं और अब वो बहुत आगे बढ़ रही हैं।

फिल्म गोलमाल में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। अब देखिए, सपने तो तब आएंगे जब नींद आएगी, और नींद तब आएगी जब हमको जो हमारा माहौल है वो ठंडा मिलेगा। और इस भीषण गर्मी में हम सभी इतने परेशान हैं कि हम लोग बस इस गर्मी से खुद को बचाने के उपाय सोचते रहते हैं। देखिए, अब लू का ऑरेंज अलर्ट कई जगहों पर जारी हो चुका है, और ऐसे में हमारे माननीय प्रधान

मंत्री जी ने भी हम सभी से इस गर्मी में, इस भीषण गर्मी और लू से बचने की हम सभी से अपील की है और बहुत से उपाय भी उन्होंने बताए हैं। देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि गर्मी में लू यानी हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए हम किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। हमें शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी है। प्यास न लगने पर भी रुक रुक कर दिन भर में कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पीजिए। घर से बाहर निकलने से पहले 1-2 गिलास पानी या छाछ पीकर जरूर निकलें। और ना शरीर को ठंडा रखने के लिए आप ना नारियल पानी, नींबू पानी, लस्सी और मौसमी फलों जैसे तरबूज, खीरा, खरबूजा, इनका सेवन बढ़ाएं। जितना हो सके कॉफी और चाय और दूसरी तरह के किसी भी नशे की चीज से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि इससे डिहाइड्रेशन बढ़ता है। फिर आप सही पहनावा जरूर रखें। देखिए, गहरे रंग के कपड़े जो होते हैं वो गर्मी सोखते हैं, इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि आप सूती के ढीले ढीले कपड़े पहने। बाहर जाते समय हमेशा गमछा या दुपट्टे से सिर और कान को अच्छे से ढकें। हाँ, और आंखों को धूप से बचाने के लिए सनग्लासेस और सिर के लिए टोपी का इस्तेमाल जरूर करें। धूप में बाहर निकलते समय सनस्क्रीन का प्रयोग करने से

एक दो ग्लास पानी या छाछ पीकर जरूर निकलें। और ना शरीर को ठंडा रखने के लिए आप ना नारियल पानी, नींबू पानी, लस्सी और मौसमी फलों जैसे तरबूज, खीरा, खरबूजा इनका सेवन बढ़ाएं। जितना हो सके कॉफी और चाय और दूसरी तरह के किसी भी नशे की चीज़ से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि इससे डिहाइड्रेशन बढ़ता है। फिर आप सही पहनावा ज़रूर रखें। देखिए, गहरे रंग के कपड़े जो होते हैं वो गर्मी सोखते हैं, इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि आप सूती के ढीले ढीले कपड़े पहने। बाहर जाते समय हमेशा गमछा या दुपट्टे से सिर और कान को अच्छे से ढकें। हाँ, और आंखों को धूप से बचाने के लिए सनग्लासेस और सिर के लिए टोपी का इस्तेमाल ज़रूर करें। धूप में बाहर निकलते समय सनस्क्रीन का प्रयोग करने से आपके स्किन को बहुत लाभ होगा, और हमेशा एक छाता ज़रूर साथ रखें। तो बस ये कुछ उपायों का आप अपने जीवन में पूरा पूरा उपयोग कीजिए और इस गर्मी से अपने आप को और अपने परिवार को बचा के रखिए।

दोस्तों, इस गीत के साथ जो है फिल्म सितमगर का और आवाज है किशोर कुमार के साथ आशा भोसले की, इस गीत के साथ अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी क्योंकि घड़ी इशारा कर रही है आपसे और बात हम और नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो हम सफर सोनाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: हर आंगन
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता कि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली जयपुर गुरुग्राम नासिक पुणे लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल ने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों बालकनी छतों दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग भारत के प्राचीन ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और निवारक स्वास्थ्य देखभाल तथा संतुलित जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज दोपहर के कारोबार में 41 अंक बढ़कर 76,051 जबकि निफ्टी 21 अंक के वृद्धि के साथ 23,935 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Supreme Court today upheld the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls done by the Election Commission of India and observed that electoral SIR advances the constitutional imperative of free and fair elections. The court held that the Election Commission has the power to conduct SIR under Article 324 of Representation of the People Act 1950 and the

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950

एक ऐसे निर्देशक जिन्होंने भारतीय सिनेमा में सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों को एक अलग ऊंचाई दी। भारत में नियो नॉयर शैली लाने वाले निर्देशक जिन्होंने सस्पेंस थ्रिलर के साथ ही पारिवारिक और प्रेम कहानियों को भी बहुत खूबसूरती से पर्दे पर उतारा। निर्माता निर्देशक पटकथा लेखक राज खोसला है कलाकार बेमिसाल की आज की शख्सियत और मैं हूं रजनी। कलाकार बेमिसाल की शुरुआत करते हैं उनकी बहुत ही प्रसिद्ध बहुत ही हिट फिल्म मेरा साया से। आवाज है इस गीत में आशा भोसले की।

राज खोसला ने एक से बढ़कर एक सफल फिल्में दी, लेकिन सच तो ये है कि वो कभी निर्देशक बनना ही नहीं चाहते थे। वो तो गायक के रूप में नाम कमाना चाहते थे। 31 मई 1925 को पंजाब के रोहान में जन्मे राज खोसला ने शास्त्रीय गायन का विधिवत प्रशिक्षण भी लिया था। इसके बाद क्या हुआ बताएंगे आपको इस गीत के बाद, जो कि हमने चुना है मेरा गांव मेरा देश फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

फिल्मों में प्लेबैक सिंगर बनने का सपना लेकर खोसला मुंबई आ गए। कुछ समय उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में म्यूजिक स्टाफ के तौर पर काम भी किया और जब उनकी मुलाकात देवानंद से हुई तो देवानंद ने राज खोसला के भीतर छुपे डायरेक्टर को पहचाना और उन्होंने ही राज खोसला को गुरुदत्त को असिस्ट करने का सुझाव दिया। स्वतंत्र निर्देशक के रूप में उनकी पहली फिल्म मिलाप थी। 1954 में आई इस फिल्म में देवानंद और गीता बाली जैसे बड़े सितारे थे मगर ये फिल्म दर्शकों को खास पसंद नहीं आई। लेकिन इसके दो साल बाद आई CID ने खोसला को स्टार निर्देशक बना दिया। तो इसी फिल्म से यानी कि CID से आपको सुनवाते हैं गीता दत्त की आवाज में ये लोकप्रिय गीत।

सीआईडी एक क्राइम थ्रिलर थी जिससे राज खोसला ने अपने स्टाइलिश शॉट्स और इनोवेटिव सॉन्ग पिक्चराइजेशन से एक अलग पहचान बनाई। खोसला हॉलीवुड डायरेक्टर अल्फ्रेड हिचकॉक के मिस्ट्री थ्रिलर से काफी प्रभावित थे। सीआईडी के बाद उन्होंने एक के बाद एक हिट सस्पेंस थ्रिलर फिल्में बनाई, जैसे कि मेरा साया, वो कौन थी, अनीता और काला पानी। काला पानी से सुनवाते हैं आपको गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: किसी के
1: क्या करना है जीते,
0: अरे हो रहना किसी के
1: अंदर है तो याद करोगे।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: आकाशवाणी एट 90
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ब्रेक के बाद जारी है कलाकार बेमिसाल और कलाकार बेमिसाल में आज बात कर रहे हैं हम जाने माने डायरेक्टर राज खोसला की। राज खोसला को महिलाओं का निर्देशक कहा जाता है, एक निर्देशक जो महिलाओं को समझता था और अपनी फिल्मों को महिलाओं के नजरिए से पेश करता था। वो कभी एक पैटर्न में बंद कर नहीं रहे। सस्पेंस थ्रिलर के अलावा दो रास्ते, दो बदन और मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी पारिवारिक फिल्में और एक मुसाफिर एक हसीना प्रेम कहानी जैसी रोमांटिक फिल्में भी उन्होंने दी। वहीं मेरा गांव मेरा देश, कच्चे धागे और दोस्ताना जैसी एक्शन फिल्में भी खोसला ने बनाई। उनकी फिल्म 16 साल एक रात की कहानी थी। इसी तरह बम्बई का बाबू फिल्म में उन्होंने नायक को एक एंटी हीरो के रूप में पेश किया। तो बम्बई का बाबू से ही आपको सुनवाते हैं अगला गीत। आवाजें हैं आशा भोसले और

फिल्म निर्देशन के साथ साथ खोसला ने कई फिल्मों की कहानी और पटकथा भी लिखी, जैसे मिलाप, प्रेम कहानी, कच्चे धागे की कहानी उन्होंने लिखी। इनके अलावा 16 साल की पटकथा भी उन्होंने लिखी और एक मुसाफिर एक हसीना की कहानी और पटकथा भी राज खोसला की कलम से ही निकली थी।

राज खोसला की फिल्मों की कामयाबी में उनके संगीत का भी अहम योगदान रहा, क्योंकि वो खुद म्यूजिक बैकग्राउंड से थे और उन्हें संगीत की गहरी समझ थी, इसलिए उनकी फिल्मों के गीत बेहद लोकप्रिय हुआ करते थे। 1980 में आई फिल्म दोस्ताना की कामयाबी के बाद उनकी सफलता का ग्राफ नीचे जाने लगा। इसके बाद राज खोसला ने फिल्मी दुनिया से खुद को अलग कर लिया और 9 जून 1991 को उन्होंने दुनिया से विदा ले ली।

इस लोकप्रिय गीत की फिल्म का नाम था वो कौन थी और आवाज थी लता मंगेशकर की। लगभग 25 फिल्मों का निर्देशन करने के अलावा राज खोसला ने एक फिल्म का निर्माण भी किया था। 1972 में आई यह फिल्म थी दो चोर। धर्मेंद्र और तनुजा स्टारर इस फिल्म को दर्शकों ने काफी पसंद किया। मरणोपरांत राज खोसला की याद में भारत सरकार द्वारा दो अलग अलग डाक टिकट जारी किए गए। पिछले साल

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 मई महीने की 27 तारीख है और दिन है बुधवार। आकाशवाणी के तवांग केंद्र से आज का हमारा प्रसारण अब आरंभ होता है। अब से लेकर रात के 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री तेंजिन दोर्जी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री कामयांगफो, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियंता के सहायक श्री एके दास और श्रीमती शिखा देखा, मनपो उद्घोषक है श्री थुतिन टाशी और मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका सांगे थामू। आकाशवाणी सुन रहे आप सभी श्रोताओं का आज के हमारे इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत है।

0: न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
2: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और दो फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नोलेजमेंट के लिए।
0: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था।

0: समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक ग्लास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
1: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉ मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी

0: साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
1: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
0: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
2: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
3: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
0: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवां केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं आप पेश है कार्यक्रम वंदना। इसमें आज आप सुनेंगे नरेंद्र चंचल से चंद शिव भजन। तो पेश है कार्यक्रम वंदना।

श्रोता अभी आप सुन रहे थे नरेंद्र चंचल से चंद शिव भजन। इसी के साथ ही कार्यक्रम वंदना यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बजे है। श्रोताओं अब पेश है विभिन्न प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। इसमें आज आप सुनेंगे किशोर कुमार से चंद बंगाली आधुनिक गीत। तो पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार से चंद बंगाली आधुनिक गीत। इसी के साथ ही कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब पेश है कार्यक्रम मेरी बात। इसमें आज जेएनवी तवांग के 8वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्र यशिल हामू से एक जीवन का अनुभव जिसने मुझे बदल दिया विषय पर अपने विचार साझा करेंगे।

दुनिया तो सिर्फ हाल पूछती है, दुनिया तो सिर्फ हाल ही पूछती है, फिक्र तो सिर्फ अपने माँ बाप करते हैं। ताशी दिले आप सभी को, मैं गीशी लामू पीएम श्री जी एनवी तावांग कक्षा 8वीं की छात्रा आकाशवाणी तावांग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मेरी वार्तालाप का विषय है एक जीवन का अनुभव जिसने मुझे बदल दिया। माँ और पिता हमारे जीवन के दीपक होते हैं जो अंधेरे में भी सही रास्ते दिखाते हैं। जब वे

0: हमारे साथ होते हैं तब हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन जब वे इस संसार से विदा हो जाते हैं तब जीवन की असली परीक्षा शुरू होती है। माता पिता के मृत्यु के बाद जीवन अचानक बदल जाता है। पहले जिन बातों में उनकी सलाह मिलती थी अब उन फैसलों को बोझ हमें खुद उठाना पड़ता है। यह अनुभव बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन यही अनुभव हमें मजबूत बनाता है। माँ और पिता केवल हमारे जन्मदाता ही नहीं होते, वे हमारे पहले गुरु और सबसे बड़ी प्रेरणा होती है। जब हमारे साथ होते हैं तब हम उनकी मौजूदगी को सामान्य समझ लेते हैं, लेकिन जब वे इस संसार से चले जाते हैं तब उनके जीवन और संघर्ष का असली महत्व समझ आता है। माता पिता की मृत्यु मेरे जीवन का सबसे दर्दनाक क्षण था। ऐसा लगा जैसे जीवन की दिशा ही बदल गई हो। हर कदम पर उनकी कमी महसूस हुई, लेकिन समय के साथ मैंने यह समझा कि वे हमें कमजोर दिखाने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते हैं। जब तक वे हमारे साथ रहते थे तब तक हमें उनके महत्व का पूरा एहसास नहीं होता, लेकिन जब वे इस संसार से चले जाते हैं तब जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई सामने आती है। जब मैंने अपने माता पिता को खोया तो ऐसा लगा जैसे मेरा सहारा छिन गया हो। उनकी आवाज़, उनकी सलाह और उनका प्रेम हर पल याद आने लगा। इस दुख ने मुझे गहराइयों से तोड़ दिया, लेकिन इसी दुख ने मुझे जीवन को समझने भी सिखाया। इस अनुभव ने मैंने सबसे पहले सीख या ली कि समय बहुत कीमती होता है। हमें अपने माता पिता के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहिए, उनसे प्रेम से बात करनी चाहिए और उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। अक्सर हम व्यस्त जीवन में उन्हें समय नहीं दे पाते और बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। माता पिता की मृत्यु ने मुझे जिम्मेदार और आत्मनिर्भर बनाना सिखाया। अब जीवन के हर निर्णय मुझे स्वयं लेने पड़ते हैं। उनकी अनुपस्थिति में मैंने सीखा कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य और साहस सबसे बड़ी ताकत होती है। उन्होंने जो संसार दिया है वही आज मेरे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस अनुभव ने मुझे दूसरों के दुख को समझने की हिम्मत भी दी। जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलती हूँ जिसने अपने माता या पिता को खोया है तो मैं उसकी दर्द को महसूस कर पाती हूँ। इससे मेरे अंदर करुणा, संवेदनशीलता और मानवता की भावना और मजबूत हुई होती है। इस दुख से मैंने सीखा कि जीवन में कोई भी स्थायी नहीं है, हमें हर रिश्ते की कद्र करनी चाहिए। माता पिता हमें बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं, उनका त्याग और संघर्ष हमें अवसर दिखाई नहीं देता, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी हर छोटी बात याद आती है। माता पिता भले ही आज हमारे साथ शारीरिक रूप से ना हो, लेकिन उनकी सीख, उनके संस्कार और उनके सपने हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उनका सच्चा सम्मान यही है कि हम उनके बताए मार्ग पर चले और एक अच्छा इंसान बने। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि माँ पिता का प्रेम जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। हमें उनके जीवन रहते ही उनकी कद्र करनी चाहिए, क्योंकि उनके जाने के बाद केवल यादें ही शेष रह जाते हैं। मुझे छाव में रखा, खुद जलता रहा धूप में। मुझे छाव में रखा, खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा एक फरिश्ता अपने माता पिता के प्रेम में। धन्यवाद।
1: इसी के साथ ही कार्यक्रम मेरी बात यहीं पर समाप्त होता है। श्रोताओं, अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम नारी संगीत का पहला गीत सुनते हैं जब तक है जहां फिल्म से नीति मोहन की आवाज में। इस गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

अगला गीत सुनते हैं लुटेरा फिल्म से मोनाली ठाकुर की आवाज में। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

अगला गीत सुनते हैं सिमरन फिल्म से गुरु रंधावा और जॉनिता गांधी की आवाजों में। इस गीत को लिखा है वायु ने और संगीत दिया है सचिन जिगर ने।

सिमरन फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम नारी संगीत यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 3:50 हो रहे हैं। अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम गीत मंजरी का पहला गीत सुनते हैं शोर इन द सिटी फिल्म से श्रेया घोषाल और तुची रैना की आवाजों में।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: अगला गीत सुनते हैं भाग मीका भाग फिल्म से जावेद बशीर की आवाज में। इस गीत को लिखा है प्रसून जोशी ने और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

अगला गीत सुनते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म से, फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन, अभय देओल और मारिया फर्नांडिस की आवाजों में एक गीत, जिसे लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने।

अगला गीत सुनते हैं आई हेट लव स्टोरीज फिल्म से श्रेया घोषाल और सोना महापात्र के आवाजों में। इस गीत को लिखा है कुमार ने और संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

अगला गीत सुनते हैं ब्रेक के बाद फिल्म से विशाल ददलानी और एलिसा मेंडोनका के आवाजों में। इस गीत को लिखा है प्रसून जोशी ने और संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत मंजिर के अंतर्गत कुछ फिल्मी नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अगला गीत सुनते हैं बॉडीगार्ड फिल्म से एश किंग और क्लिंटन सिरेजो के आवाजों में। इस गीत को लिखा है नीलेश मिश्रा ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

अगला गीत सुनते हैं आर राजकुमार फिल्म से अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल की आवाजों में। इस गीत को लिखा है नीलेश मिश्रा ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं, रांझना फिल्म से जावेद अली, कीर्ति संगातिया और पूजा की आवाजों में। इस गीत को लिखा है इशाद कामिल ने और संगीत दिया है AR रहमान ने।

रांझना फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत मजरी यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब पेश है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। इसमें आज आप सुनेंगे रोनू मजुमदार से बांसुरी वादन। तो पेश है कार्यक्रम राग रंग।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे रोनू मजुमदार से बांसुरी वादन। इसी के साथ ही कार्यक्रम राग रंग यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 हो रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया हमारे साथ बने रहे।
1: आकाशवाणी है, अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा, यह प्रतिनिधि अधिनियम 1950 के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक रिटायर्ड ने आज ईटानगर स्थित लोकभवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत आयोजित युवा संगम कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलावों की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। अरुणाचल प्रदेश में 188 साल बाद ब्लूबेरी की एक दुर्लभ प्रजाति फिर से खोजा गया है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने इस खोज को अरुणाचल प्रदेश के प्राकृतिक इतिहास में एक उल्लेखनीय अध्याय कहा। भारत और कनाडा में द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। CBI ने NEET UG 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। और IPL क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक आयातों को और आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग

0: द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने एस आई आर को पूर्ण संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एस आई आर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा है कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था रहेगी। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: एसआईआर का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा है कि वे भरपूर पानी पिए और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनियों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता के साथ और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध भी किया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक रिटायर ने आज ईटानगर स्थित लोकभवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत आयोजित युवा संगम कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश और नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेरिस्ट से आए लगभग भाग लेने वाले छात्रों से बातचीत भी की। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के महत्व पर जोर देते हुए राज्यपाल ने युवाओं को ऐसे कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जो सांस्कृतिक समझ, भावनात्मक जुड़ाव और साझा राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाता हो। राज्यपाल ने युवाओं से पारंपरिक मूल्यों, स्वदेशी ज्ञान, भाषाओं और संस्कृति के प्रथाओं के साथ संरक्षित करने का भी आह्वान किया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और सतत जीवन शैली की दिशा में योगदान देने के लिए भी प्रेरित किया। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसंख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रविकोस समिति के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने संयुक्त सचिव विदेशी एक इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। इस बीच अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और मूल पहचान की सुरक्षा आपस में गहरे तौर पर जुड़ी हुई है, खासकर सीमावर्ती राज्य और पूर्वोत्तर के लिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों के लिए सांस्कृतिक विरासत, जनसंख्यिकी संतुलन और सामाजिक सद्भाव की रक्षा करना केवल एक नीतिगत मामला नहीं बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी भी है। शोधकर्ताओं द्वारा अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के विजयनगर के दूरदराज के जंगलों में ब्लूबेरी के एक दुर्लभ और लुप्त प्राय वेसिनियम पिलिफेरम को फिर से खोजा गया है। इसे पहली बार 1836 में दर्ज किए जाने के लगभग 188 साल बाद फिर से खोजा गया है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र में इस खोज को एक बड़ी वनस्पति उपलब्धि और भारत के जैव विविधता रिकॉर्ड में एक महत्वपूर्ण जुड़ाव के रूप में देखा जा रहा है। शोधकर्ताओं ने बताया है कि वेनिसिनियम पिलिफेरम इराकेसिया परिवार से संबंधित ये, जिसमें ब्लूबेरी और क्रेनबेरी शामिल होते हैं। संस्थान के एक सूत्र ने बताया है कि इस प्रजाति का हाल ही में सोसाइटी फॉर एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी NEIST और सहयोगी संस्थानों के शोधकर्ताओं द्वारा फिर से खोजा गया है। NEIST के सूत्र ने बताया है कि ये प्रजाति विजयनगर के घने जंगलों में नोवा दिंगिंग नदी के सहायक नदियों के पास पाए

0: है और ये पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है जो अपने समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। इस बीच उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने इस खोज को अरुणाचल प्रदेश के प्राकृतिक इतिहास में एक उल्लेखनीय अध्याय कहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले की अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर में कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर से रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरूरे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने कोचिंग केंद्र में मालिक से बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हरदश कुमार शाह है जो पुणे में स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभुल मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स के फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोप में मनीषा हवलदार से मिले थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा है कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कूटनीति एवं कार्यनीति क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार 2030 तक $50 अरब तक बढ़ने के लक्ष्य की पुष्टि की है।
1: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
0: और आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली में न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटरी मैच खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शब्दसाची वर्षा जी। The Supreme Court today upheld the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls done by the Election Commission of India and observed that electoral SIR advances the constitutional imperative of free and fair elections. The court held that the Election Commission has the power to conduct SIR under Article 324 of Representation of the People Act 1950 and the rules made thereunder. The court said free and fair elections depend on accurate and credible electoral rolls and observed that the Election Commission's revision exercise aims to remove possible errors and duplication caused by migration, urbanization and decades without an intensive revision. The Cabinet today approved continuation of the scheme for assistance in ration transport and handling income with automation in PDS, Sarthak PDS as an umbrella scheme in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the scheme will provide assistance to state agencies for intra-state movement of food grains with support for fair price shops and help in modernization of public distribution system. The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. The committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar, Census Commissioner along with former IS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastava and economist Dr. Shamika Ravi were appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreign Affairs in Home Ministry, will serve as member secretary in the committee. Meanwhile, Chief Minister Pema Khandu has welcomed the center's decision and said national security and protection of indigenous identity are deeply connected, especially for border states and the Northeast. In a social media post, he said, quote, for states like Arunachal Pradesh, safeguarding cultural heritage, demographic balance and social harmony is not mere

adam badiyam püyübe düğübe çüğün şepsi mendo

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 6:10 हुए हैं। श्रोताओं, अब पेश है कार्यक्रम जरोखा। जरोखा में हम आपको अवगत कराते हैं हमारे केंद्र से आज एवं कल प्रसार किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियों से। तो चलिए पहले आपको अवगत कराते हैं आज के कार्यक्रमों से। आज शाम 6:20 पर कार्यक्रम शिल्दनेरी में सुनिए सगादावा के शुभ अवसर पर मन ट्रेडी एजुकेशनल और कल्चर सोसाइटी द्वारा बुद्ध पार्क तवांग में आयोजित धर्म शिक्षण कार्यक्रम में 8वें दिन पर CBCS तवांग मठ के गेशे संगे टशी द्वारा कर्म और फल विषय पर प्रवचन का शेष भाग। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार शाम 7:00। आज शाम 7:10 पर हमारा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार शाम 7:45 पर। शाम 7:55 पर कार्यक्रम क्वामे तराने में सुनिए AR रहमान की आवाज में एक देशभक्ति गीत। आज शाम 8:00 कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत में आनंद लीजिए। आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदबहार पुराने नगमों का। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैन आज शाम 8:00, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा News@9 आज रात 9:00। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब आपको अवगत कराते हैं कल यानी 28 मई 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। रोजाने की तरह हमारा कल का प्रसारण आरंभ होगा दोपहर 2:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार के साथ, तत्पश्चात दोपहर समाचार 2:15 पर। भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना में सुनिए मनहर उदास से चंद हिंदी भक्ति गीत कल दोपहर 2:30 पर। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत सुनिए मियाली सिद्धिसाव और साथियों से चंद आका गीत कल दोपहर 3:00। कल दोपहर 3:30 पर साप्ताहिक कार्यक्रम महिला मंच। कल दोपहर 3:50 पर कार्यक्रम गीत मंजरी में आनंद लीजिए वेकअप सेठ फिल्म से कविता सेठ। आयशा फिल्म से निखिल डिसूजा और अमित त्रिवेदी। एंटरटेनमेंट फिल्म से अतीफ असलम और शर्मली खोलगड़े। लैला मजनू फिल्म से अतीफ असलम और ज्योतिका टंगरी। रमैया वस्तवैया फिल्म से अतीफ

असलम और श्रेया घोषाल, थ्री इडियट्स फिल्म से सोनू निगम और स्वनंद किरकिरे, जब वी मेट फिल्म से शान और उस्ताद सुल्तान खान, किस्मत कनेक्शन फिल्म से अतीफ असलम और अलका याग्निक, मुन्ना माइकल फिल्म से विशाल मिश्रा और सुनिधि चौहान और भागी फिल्म से मीट ब्रदर्स और मोनाली ठाकुर की आवाज़ों में चंद फिल्मी नगमों का। शास्त्र संगीत का कार्यक्रम रागरंग में सुनिए पंडित विश्व मोहन भट्ट से मोहन वीणा वादन कल शाम 4:30 में पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार शाम 4:45 में पर। रोजाने की तरह मनपा कार्यक्रम नमथल लेरिम कल शाम 5:00। 5:30 में पर श्री थुतिन टशी द्वारा दैनिक मुख्य सूचना मनपा में। साप्ताहिक मनपा कार्यक्रम में सुनिए सकादावा के शुभ अवसर पर मनरति एजुकेशनल और कल्चरल सोसाइटी द्वारा बुद्धपाक तवा में आयोजित 9वें दिन का धर्म शिक्षण पर प्रवचन कल शाम 5:35 में पर। लेरिम सेरा शाम 6:00 6:10 में पर कार्यक्रम जरोखा। बौद्ध भक्ति गीतों का कार्यक्रम शेल्डन लेरिम में सुनिए सकादावा के शुभ अवसर पर मन रति एजुकेशनल और कल्चरल सोसाइटी द्वारा बुद्धपाक तवा में आयोजित 9वें दिन का धर्म शिक्षण पर प्रवचन का शेष भाग कल शाम 6:20 में पर। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार शाम 7:00।

कल शाम 7:10 पर कार्यक्रम पोम ऑफ द डे में सुनिए। एलडी स्कॉलर्स होम के 5वीं कक्षा में पढ़ रही छात्र टशी ड्रेमा ग्यामो से एक कविता। तत्पश्चात साप्ताहिक कार्यक्रम एक और अनेक में आनंद लीजिए युवराज फिल्म से बेनी दयाल और श्रेया घोषाल, गजनी फिल्म से बेनी दयाल और शिल्पा राव, फाइटर फिल्म से बेनी दयाल और विशाल, बैंड बाजा बारात फिल्म से बेनी दयाल और हिमानी कपूर, स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से बेनी दयाल, नाजिया हसन और सुनिधि चौहान, ये जवानी है दीवानी फिल्म से बेनी दयाल और शेफाली अल्वारेस और एक मैं एक तू फिल्म से बेनी दयाल और अनुष्का मनचंदा के आवाजों में कुछ फिल्मी नगमों का। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर कल शाम 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत में सुनिए। गुंजन सक्सेना फिल्म से एक देशभक्ति गीत। कल शाम 8 कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत में आनंद लीजिए आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमों का। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसार स्पोर्ट्स कैन कल शाम 8:30 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज 9 कल रात 9:00। कल रात्रि 9:16 पर आकाशवाणी तवांग के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोताओं ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले चंद कार्यक्रम की जानकारी। इसी के साथ ही कार्यक्रम जरूखा यहीं पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम सुनने का मनपा में कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: आर के साथ मैं जागृति शर्मा। मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upscionline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज तीन और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल हैं। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने के दर्द में बदल गया है। जापानी संसद ने आज विदेशी संकट से निपटने के लिए सूचना जुटाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने हेतु राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दे दी। परिषद की स्थापना जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची के शासन के प्रमुख उद्देश्यों में एक है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन से मुकाबला खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी।

वाणी दिल्ली से प्रसारित अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:10 हुए हैं। श्रोताओ, अब पेश है हमारा साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसे संचालित कर रही है सिटिम याचिन। तो पेश है कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: हेलो नमस्कार
1: अमल बसुमतारी बात कर रहे हो रंगापाड़ा सोनीतपुर असम से।
0: जी बताइए आपको मैं कौन सा गीत आज सुनाऊं?
1: आज मैं ये दिल आशिकाना का।
0: जी ये दिल आशिकाना फिल्म का कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: आई मीन लव सॉन्ग है, उसको सुनना चाहता हूँ।
0: जी जी जरूर सुनवाएंगे। और बताइए आपके साथ आज इस गीत को सुनने वाले और कौन कौन है?
1: मेरे साथ मेरे दोस्त है आइकोन मुंडा है
0: जी,
1: बसुमतारी रमेश पात्रो है
0: जी,
1: जोगेंद्र रोपी है, देवाशीष हजरिका, हितेंद्र दास, मीनाल अहमेद सुन रहा हूँ, आकाशवाणी तवांग सुनने वाले सभी दोस्तों को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। अभी भी अरुण एफएम में जो रेडियो ऑन डिमांड प्रोग्राम है उसको सुन रहा हूँ।
0: अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, रेडियो के साथ आपका जो प्यार है वो देते रहिएगा। इसी के साथ मैं आपकी फरमाइश को पेश करती हूँ।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, नमस्कार
1: हेलो फरमाइश।
0: जी। जी बिल्कुल, हेलो, आकाशवाणी है।
1: हम गुवाहाटी से बोल रहा हूँ, फ्रॉम टू दस।
0: जी, दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और बताइए दास जी, मैं आपको कौन सा गीत पेश करूँ?
1: गैंगस्टर फिल्म का जो जुबिन गर्ग अली का जो गाना हमको
0: जी
1: सुना सकेगा?
0: जी जी बिल्कुल, जरूर सुनवाएंगे इस गीत को। और बताइए दास जी, आपके साथ इस गीत को सुनने वाले और कौन कौन होंगे?
1: मेरा बेटी है
0: जी
1: रोजी, और मेरा भाई है मिंटू,
0: जी
1: और मेरा बेबी और दीप्ति, वो लोग सुना जाता है, बहुत अच्छा है ये गाना।
0: जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गीत है
1: हाँ
0: जो जुबिन गर्ग जी ने गाया था। तो
1: हाँ
0: चलिए ठीक है, तो
1: ओके,
0: मैं आपकी फरमाइश को पेश करती हूँ। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद धन्यवाद।

0: हेलो, नमस्कार
1: नमस्कार।
0: जी
1: सुनरी असम से भाईकुन मुंडा बोल रहा हूँ।
0: जी भाईकुन मुंडा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए, मैं आज आपको कौन सा गीत पेश करूं?
1: फिल्म का नाम है चिता में गाना है ये तेरा सजना सवरना बिन साजन के बेकार है, ये बिंदिया चूड़ी कंगना बिन साजन के बेकार है, दो दिन का है ये जोवन बनने को तेरा साजन ये आशिक तैयार है। ऐसा है गाना मैम?
0: जी जी बहुत बढ़िया गाते हैं। हम तो आपकी आवाज में खो ही गए थे। मन कर रहा था और आगे सुनूं, लेकिन समय की थोड़ी सी पाबंदी है। मैं आपको इस गीत को जरूर सुनाऊंगी। और बताइए, आपके साथ इस गीत को सुनने वाले और कौन कौन है?
1: मेरे दोस्त है जो आकाशवाणी से जुड़ा है, अमल बसुमतारी, विमल बसुमतारी,
0: जी
1: अरुण पत्र, लकी, जोगिंदर लॉन्गफी, हम लोग सब आकाशवाणी से जुड़े रहते हैं। मैं हर कार्यक्रम सुनते हैं, अच्छा लगता है।
0: आप हमारे आकाशवाणी के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और
1: जी, मेरा भी कॉल रिसीव करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी जी आप इसी तरह से जुड़े रहिएगा। चलिए, मैं आपकी फरमाइश को पेश करती हूँ।
1: धन्यवाद
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, नमस्कार
1: नमस्कार मैम
0: जी। नमस्ते
1: जी। हम धेमाजी असम जुना मेखारी सपोर्ट से बोल रहा था, बिमल बसुमतारी।
0: जी, बिमल बसुमत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। बताइए, आज आपको कौन सा गीत सुनाऊं?
1: जी मैम, हमको सुनना था सुरा की दिल मेरा ये गाना।
0: बताइए, आपके साथ इस गीत को सुनने वाले और कौन कौन है?
1: हम लोग का बहुत शक्ति है मैम, हम दिल कर करना चाहता हूँ। हम लोग का सबसे पहले है अमोल बसुमतारी, भाईकोन मुंडा है, प्रजापति है, अंजलि बसुमतारी है, सुनीता बसुमतारी है, दिल्ली से है धर्मवीर है, रुखुबीरा मिथा है, प्रवेश
0: जी
1: प्रजापति है, राकेश है, पूरन
0: जी
1: वर्मा है। हम लोग का दोस्त के लिए, सारा दोस्त लोग के लिए दिल कर हम,
0: जी
1: और आपको
0: जी
1: भी मैम।
0: जी जी बसुमतरी जी, आपकी ओर से मैं हमारे जितने भी सुनने वाले श्रोता हैं उन सभी को आपकी ओर से डेडिकेट करती हूँ। तो इसी के साथ मैं आपकी फरमाइश को पेश करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैम।

0: जी हाँ, तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। अगर आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो हर बुधवार की सुबह 10 बजे हमें इस मोबाइल नंबर पर जरूर कॉल कीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 6033914908। इसी जानकारी के साथ ही अब आज का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी अभी पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय और इसी दिन। तब तक के लिए तकनीकी सहयोगी तानिंग तको के साथ अपने दोस्त सिटी म्याजिन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: इसी के साथ ही कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी यहीं पर समाप्त होता है।

आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:45 हो रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारे साथ बने रहें।

प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों के लिए सांस्कृतिक विरासत, जनसांख्यिकी संतुलन और सामाजिक सद्भाव की रक्षा करना केवल एक नीतिगत मामला नहीं बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों के प्रति एक जिम्मेदारी भी है। ईटानगर में आज मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में स्वदेशी अधिकारों की सुरक्षा, इनरलाइन परमिट ILP और APST से संबंधित विषयों पर 7 घंटे लंबी परामर्श बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री चौना मेन, छात्र संगठन, कानूनी विशेषज्ञ, राजनीतिक दल, CBOs, सामुदायिक आधारित संगठन और विभिन्न सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी है कि राज्य में अवैध घुसपैठ की समस्या को रोकने के लिए एक अलग और समर्पित ILP विभाग की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि अरुणाचल इंडिजिनस ट्राइबल फोरम, APSU, ST बचाओ आंदोलन समिति और कानूनी विशेषज्ञों के साथ सदस्य प्रतिनिधिमंडल को 29 तारीख को एक उच्च स्तरीय फॉलो अप बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है ताकि राज्य के भविष्य के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया जा सके। मंत्रिमंडल ने सहायता योजना राशन परिवहन एवं हैंडलिंग PDS में स्वचालन के साथ यानी सार्थक PDS को एक अम्ब्रेला योजना के रूप में 16वें वित्त आयोग चक्र यानी फाइनेंस कमीशन साइकिल की अवधि में जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसमें केंद्र का कुल व्यय 25,530 करोड़ रुपए। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि ये योजना राज्य एजेंसियों को राज्य के भीतर खाद्यान्न में परिवहन की सहायता देगी, उच्च मूल्य की दुकानों को समर्थन प्रदान करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS के आधुनिकीकरण में भी मदद करेगी। लिकाबाली स्थित उपायुक्त कार्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की एक समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक लोअर सियांग जिला निर्वाचन अधिकारी गोबी न्यारोर के देखरेख में आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य पूरे राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया से संबंधित सभी हितधारकों को अवगत कराना था। बैठक में अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष कार्दो निग्योर ने नागरिकों से अपील की है कि वे पुनरीक्षण प्रक्रिया का सख्ती से पालन करें। उन्होंने राजनीतिक दलों से भी अपील की है कि वे इच्छुक मतदाताओं के नामांकन में सटीकता रखें और इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक रिटायर्ड ने आज ईटानगर स्थित लोकभवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत आयोजित युवा संगम कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश और नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी NERIS से आए भाग लेने वाले छात्रों से बातचीत की। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के महत्व पर जोर देते हुए राज्यपाल ने युवाओं को ऐसे कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जो सांस्कृतिक समझ, भावनात्मक जुड़ाव और साझा राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देते हों। राज्यपाल ने आशा व्यक्त की है कि उत्तर प्रदेश के छात्रों की यात्रा मित्रता के बंधन को मजबूत करेगी और पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा वहां के लोगों के बारे में उनकी समझ को और गहरा करेगा। राज्यपाल ने राज्य के लोगों, विशेषकर मुस्लिम समुदाय को ईद उल जुहा की शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि भारत की शक्ति उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता में एकता और विभिन्न धर्मों व परंपराओं के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में निहित है। उन्होंने कहा कि ईद उल जुहा भाईचारे, आपसी सम्मान, उत्तरता और सामाजिक सद्भाव की भावना के प्रेरित करती है और साथ ही यह हमें जरूरतमंदों के साथ खुशी साझा करने और उनकी देखभाल करने की सीख देती है। तवांग उपायुक्त कार्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर NCOT की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त नामग्याल आंगमो ने सभी हितधारकों से मादक पदार्थों की तस्करी और संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए समन्वय और सहयोग को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने समाज में नशा रोकथाम और बाल संरक्षण के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी जोर दिया। और ईटानगर नगर निगम IMC ने राष्ट्रीय राजमार्ग 415 के किनारे राजधानी क्षेत्र में संचालित सभी सड़क किनारे के मांस, फल और सब्जी विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे 10 दिनों के भीतर अपना संचालन बंद कर सड़क किनारे क्षेत्र को खाली कर दें। यह कदम जन स्वास्थ्य की सुरक्षा और यातायात जाम को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: will be conducted from 1st to 12th June this year. That's all in this news bulletin. Namaskar.
1: आकाशवाणी ईटानगर से प्रसारित अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:55 हुए हैं। श्रोताओं अब पेश है कार्यक्रम क्वामे तराने। इसमें आज आप सुनेंगे एआर रहमान की आवाज में एक देशभक्ति गीत। तो पेश है कार्यक्रम क्वामे तराने।

एआर रहमान के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम क्वामे तराने अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 8 बजे है। श्रोताओं अब पेश है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत सुनिए आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद फिल्मी नगमे। आज इस कार्यक्रम का पहला फरमाइश हमें प्राप्त हुआ है उर्गिलिंग विकास नगर तवांग के लपसां तेंदा जी से। इन्होंने

श्रोताओं आप पेश है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत सुनिए आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद फिल्मी नगमे। आज इस कार्यक्रम का पहला फरमाइश हमें प्राप्त हुआ है उर्गिलिंग विकास नगर तवांग के लपसां तेंदा जी से। इन्होंने फरमाइश किया है ये वादा रहा फिल्म से यह गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। इस गीत को लिखा है गुलशन बौरा ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

अगला फरमाइश हमें प्राप्त हुआ है अर्बन सेंसस ग्रुप तवांग के उर्गिन सोमो, यांग्रिन लामो, सिरिंग वांगचू, लम नुरबू और तेंजिन ट्रोका सेगिरेपाजी से। इनका फरमाइश सुनने से पहले मैं बता दूं कि हमें तेंजिन ट्रोका सेगिरेपाजी द्वारा आकाशवाणी तवांग परिवार के लिए लिखी गई एक कविता प्राप्त हुई है जो कुछ इस प्रकार है। घड़ी में 8 बजते ही सुरीला जाम होता है, शुरू व्हाट्सएप पर फिर आपका पैगाम होता है। ये आधे घंटे का जादू बड़ा कमाल करता है, सारे 8 बजे तक ही दिलों का हाल करता है। पुरानी फिल्म का गाना सुहाना मोड़ लाता है, तवांग का हर एक श्रोता पुराना दौर गाता है। सजाते हो हमारी ही पसंद से आप हर महफिल, आकाशवाणी तवांग को दुआएं देता है यह दिल। तेंजिन ट्रोका जी, आपकी इस खूबसूरत कविता के लिए आकाशवाणी तवांग का परिवार आपको तहे दिल से धन्यवाद करता है और हम आशा करते हैं कि यह कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्म गीत यूं ही आपका मनोरंजन करता रहेगा। धन्यवाद। आइए अब आपका फरमाइश किया गया गीत सुनते हैं। 16 साल फिल्म से हेमंत कुमार की आवाज में इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है SD बर्मन ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत। आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए कुछ सदाबहार पुराने नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए आगे बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर, जो हमें प्राप्त हुआ है देर पटन गुजरात के धीरज वी रबड़ी जी से। इन्होंने फरमाइश किया है मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से गीत किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को लिखा है अनजान ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

अगला फरमाइश हमें प्राप्त हुआ है पदमपुर श्री गंगानगर राजस्थान के मेहर अरोरा, कीर्ति अरोरा, भूमिका अरोरा और ममता अरोरा से। इन्होंने फरमाइश किया है क्रोधी फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का अंतिम फरमाइश का जो हमें प्राप्त हुआ है, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र के पीएस नवखर, निर्मला नवखर और विशाल नवखर से, और मालकापुर के नारायण इंगले, मंगला इंगले और आशीष मुरेखर से। इन्होंने फरमाइश किया है परख फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत दिया है सलील चौधरी ने।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी की व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत का नाम और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादोबारा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हंसी यादों, कुछ और नगमों के साथ।

आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 8:30 हो रहे हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसार स्पोर्ट्स कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज 9। कृपया हमारे साथ बने रहें।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने बनाया

0: अब विश्व रिकॉर्ड। आईपीएल के एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराया। एचएस प्रणॉय ने सिंगापुर ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। 27 पदकों के साथ भारत ने अंडर 23 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप का समापन किया। अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप कल से वियतनाम के दानांग में। और भारत को मिली एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं निशानेबाजी से, जहां ईशा सिंह ने न सिर्फ कई कीर्तिमान बनाए बल्कि पदकों पर भी निशाना साधा। म्यूनिख में आईएसएसएफ राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने कई कीर्तिमान अपने नाम किए। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में ईशा ने 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने किम येजी के 42 हिट के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया।
1: Oh, Isha, can we get one more? Just one more. Oh, nonetheless, a new world record, a new junior world record has been set. And there we go, Isha Singh, delighted. She's a gold medalist here in Munich. History in front of us.
0: में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लामा मिनचेवा और कोरिया के शीर्ष खिलाड़ी जेन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। 38 हिट के साथ डोरीन वेनेकैंप दूसरे और 31 के साथ मिरोस्लामा मिनचेवा तीसरे स्थान पर रही। मैच के बाद ईशा ने कहा कि मैंने अपने प्रोसेस पर ध्यान दिया।
2: I focused on myself, my process, and I did my best to execute what I was doing in my training. And yeah, I think I would tell that to anyone who wants to perform their best.
0: अब सीधे लिए चलते हैं आपको न्यू चंडीगढ़, जहां आईपीएल का रोमांचक मुकाबला जारी है। न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 12वें ओवर में 2 विकेट पर 163 रन बना लिए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला करेगी और हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 12 ताबड़तोड़ छक्के लगाए और 5 चौके के साथ उन्होंने 29 गेंद पर 334.48 के स्ट्राइक रेट से 97 रन की पारी खेली। इस पारी के दौरान उन्होंने क्रिस गेल के एक ही सीजन में 59 छक्के का भी रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। आरसीबी ने कल क्वालिफायर 1 में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर दमदार जीत दर्ज की।
3: धर्मशाला में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी आरसीबी ने धमाकेदार अंदाज में शुरुआत की। हालांकि टीम को 21 के स्कोर पर वेंकटेश अय्यर के रूप में पहला झटका लगा। इसके बाद देवदत्त पड्डिकल ने विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 72 रन जोड़कर टीम को 93 के स्कोर तक पहुंचाया। 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर कोहली को जेसन होल्डर ने बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। कोहली 25 गेंद में 6 बाउंड्री के साथ 43 रन बनाकर आउट हुए। इसी ओवर की चौथी गेंद पर होल्डर ने पड्डिकल को भी अपना शिकार बनाया। पड्डिकल ने 30 रन का अहम योगदान दिया। आरसीबी ने 94 के स्कोर तक अपने 3 विकेट गंवा दिए थे। यहां से कप्तान रजत पाटीदार ने कुणाल पांड्या के साथ चौथे विकेट के लिए 95 रन जोड़कर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। कप्तान पाटीदार ने टिम डेविड के साथ 25 रन और जितेश शर्मा के साथ 12 गेंदों में 40 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी करते हुए टीम को 254 के स्कोर तक पहुंचा दिया। कप्तान रजत पाटीदार ने 9 गगनचुंबी छक्के और 5 चौकों की मदद से 93 रन की नाबाद पारी खेली। विपक्षी खेमे से कगिसो रबाडा और जेसन होल्डर ने 2-2 विकेट झटके। 255 रन के विशाल लक्ष्य के जवाब में गुजरात की शुरुआत निराशाजनक रही। टीम को 17 के स्कोर पर साई सुदर्शन के रूप में पहला झटका लगा। फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज साई सुदर्शन महज 14 रन पर हिट विकेट होकर आउट हो गए। कप्तान शुभमन गिल भी 2 रन ही बना सके और अनुभवी भुवनेश्वर कुमार का शिकार बने। व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट जॉश बटलर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 29 रन बनाए, लेकिन जल्द ही जॉश हेजलवुड ने उन्हें बोल्ड कर दिया। गुजरात के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के आउट होते ही टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। पावर प्ले के भीतर ही गुजरात की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। आलम ये रहा कि टीम ने 88 के स्कोर तक अपना 8वां विकेट भी खो दिया था, जिसके बाद राहुल तेवतिया और मोहम्मद सिराज ने 68 रन की साझेदारी करते हुए टाइटंस को सम्मानजनक टोटल तक पहुंचाने में मदद की। राहुल ने 4 छक्कों के साथ 68 रन बनाए, लेकिन टीम को जिता नहीं सके। गुजरात की पूरी टीम 3 गेंद शेष रहते 162 रन पर ही सिमट

0: आरसीबी की तरफ से जैकब डफी ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए। कप्तान रजत पाटीदार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कप्तान रजत ने कहा कि हम शुरू से ही मुकाबले को आक्रामक होकर खेलना चाहते थे।
1: इट वाज अ सुपर गेम फॉर अस, द वे एवरीवन वाज स्ट्राइकिंग विद द इंटेंट, सो आई थिंक दैट वाज देयर इन एवरी बैट्समैन, सो वी हैड अ चैट इन द मीटिंग एंड या वी हैव टू कीप अ गुड बॉडी लैंग्वेज एंड द अटैकिंग माइंडसेट, द वे वी प्लेड, द वे वी डोमिनेट इन दिस गेम, आई थिंक दैट वाज सुपर। स्टार्टिंग आई टेक सम फ्यू बॉल्स, 8-10 बॉल्स टू सी हाउ द विकेट इज बीइंग about the bowler is doing. So I try that as many as ball I play and I always like to put bowler under pressure.
0: अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आरसीबी को खिताबी मुकाबले में कौन सी टीम चुनौती पेश करेगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
2: इस हार के बावजूद जीटी के पास फाइनल का टिकट हासिल करने का एक और मौका होगा, क्योंकि गुजरात 29 मई को क्वालिफायर 2 में एलिमिनेटर मैच के विजेता टीम के साथ खेलेगी। अब सीधे रुख करते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर, जहां एचएस प्रणॉय ने कोर्ट में अपना दमखम दिखाया। स्टार भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणॉय ने सिंगापुर ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। प्रणॉय ने आज इंडोनेशिया के 5वीं वरीयता प्राप्त जोनाथन क्रिस्टी को हराया। वहीं भारतीय प्रशंसकों की निगाहें आज होने वाली लक्ष्य सेन के मुकाबले पर भी होंगी। एक नज़र आज के खेल प्रदर्शन पर।
3: विश्व चैंपियनशिप 2023 और एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता 33 वर्षीय प्रणॉय ने एक घंटे से अधिक चले मुकाबले में इंडोनेशियाई खिलाड़ी पर 10-21, 21-12, 21-18 से जीत हासिल की। प्रणॉय ने पहले गेम में धीमी शुरुआत की और 10-21 से पहला गेम हार गए। दूसरे गेम में जबरदस्त वापसी करते हुए उन्होंने 21-12 से गेम जीता। निर्णायक गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच प्रत्येक अंक के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिली। शुरुआत में क्रिस्टी 6-3 से आगे थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने आखिरी 5 अंक जीतकर मुकाबला अपने नाम किया। क्रिस्टी के खिलाफ पिछले 5 वर्षों में यह प्रणॉय की पहली जीत है। इससे पहले उन्होंने 2021 इंडोनेशिया ओपन में क्रिस्टी को हराया था। प्रणॉय अब अगले दौर में सिंगापुर के पूर्व विश्व चैंपियन लॉ किंग यू से भिड़ेंगे। ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो की भारतीय मिक्स डबल्स जोड़ी ने भी वांग टीएनसी और लिम च्यू सियन की मलेशियाई जोड़ी को 21-14, 20-22, 21-13 से हराया। किदांबी श्रीकांत और मालविका बंसोड़ पहले दौर में ही हार कर बाहर हो गए। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
2: बैडमिंटन से चलते हैं रेसलिंग कोर्ट की ओर, जहां रेसलिंग में कल भारतीय कुश्ती खिलाड़ियों ने कई पदक अपने नाम किए। भारतीय पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती टीम वियतनाम के दानांग में हुए अंडर 23 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में चैंपियन बनकर उभरी है। भारत कुल 27 पदक के साथ पहले, किर्गिस्तान दूसरे, जबकि कजाकिस्तान तीसरे स्थान पर रहे। आइए जानते हैं प्रतियोगिता में कैसा रहा खिलाड़ियों का प्रदर्शन।
4: भारतीय टीम ने फ्रीस्टाइल में ऐतिहासिक जीत के साथ अपने कॉन्टिनेंटल कैंपेन का शानदार अंत किया। भारतीय टीम ने फ्रीस्टाइल, महिला कुश्ती और ग्रीको रोमन कैटेगरी में 11 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। चैंपियनशिप जीतने वाली फ्रीस्टाइल टीम ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य सहित 9 पदक के साथ अपना कैंपेन खत्म किया। अक्षय टी ढेरे और विक्की ने स्वर्ण पदक जीतकर शुरुआत की। इस लय को कुमार मोहित और चंद्रमोहन ने आगे बढ़ाया। दीपक राठी, पुनीत कुमार और लैकी ने कड़ी मेहनत से रजत पदक जीतकर टीम की ऐतिहासिक सफलता में योगदान दिया, जबकि दीपक बेरवाल और मोर सचिन ने कांस्य पदक अपने नाम किए। भारत के महिला पहलवानों ने पूरे टूर्नामेंट में दबदबा बनाया और शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 पदक जीते। महिला टीम ने शानदार 6 गोल्ड मेडल जीते, जिसमें मुस्कान, तपस्या, भाग्यश्री, पुलकित, मानसी और काजल सभी ने अपने अपने टाइटल मुकाबलों में तकनीकी बेहतरी दिखाई। नेहा और स्वीटी ने रजत पदक जीते, जबकि अमृता और अहिल्या ने कांस्य पदक के साथ अपना कैंप खत्म किया। ग्रीको रोमन कैटेगरी में भारतीय पहलवानों ने टूर्नामेंट की शुरुआत में ही 8 मेडल जीतकर एक मजबूत नींव रखी। सुमित 63 किलोग्राम डिवीजन में स्वर्ण पदक जीतकर सबसे आगे रहे। सूरज और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। नीरज पटेल, सचिन, रोहित बुरा, रोहित और हरदीप ने कांस्य पदक जीतकर इस शानदार प्रदर्शन में और इजाफा किया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा, अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप उठाना भारतीय कुश्ती के लिए एक बड़ी कामयाबी है और पूरे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। अंडर 23 प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के लिए अब सबकी निगाहें अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप पर होंगी। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
2: तीनों स्टाइल में हमारे एथलीटों ने साबित कर दिया कि भारतीय कुश्ती का भविष्य बहुत उज्जवल है। अब सीधे

0: रेसलिंग से चलते फ्रेंच ओपन की ओर। दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी यानिक सिन्हा ने फ्रेंच ओपन टेनिस में शानदार वापसी करते हुए क्लेमेंट टैबोर को हराया। चार बार की चैंपियन इगा स्वैतिक ने फ्रेंच ओपन महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। स्वैतिक ने 35वीं रैंकिंग वाली सारा बेजलेक को 6-2 6-3 से हराया। 11वीं वरीयता प्राप्त पेलिंडा बेचिच ने कैटी मैकनेली को 6-4 6-0 से हराकर अगला दौर में प्रवेश किया।
1: सिनर ने अपने पहले राउंड के मुकाबले में फ्रेंच वाइल्ड कार्ड क्लेमेंट टैबोर को 6-1 6-3 6-4 से हराकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। लाल बजरी पर सिनर की इस पहली जीत ने उन्हें सदी में लगातार 30 या उससे ज्यादा मैच जीतने वाले पुरुषों की सूची में शामिल कर दिया है, जिसमें रोजर फेडरर, राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच भी शामिल है। इस 24 साल के खिलाड़ी ने पूरी शाम बेसलाइन से खेल पर अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने 3 सेट में कुल 40 विनर्स लगाए और उन्हें एक भी ब्रेक पॉइंट का सामना नहीं करना पड़ा। तीसरे सेट के बीच में एक बहुत ही शानदार पल आया, जब सिनर ने बेहद आसानी से अपने रक्षात्मक खेल को आक्रामक खेल में बदल दिया। पहले उन्होंने बेस लाइन के काफी पीछे से एक फोरहैंड स्क्वैश शॉट लगाया और उसके कुछ ही पलों बाद फिसलते हुए एक शानदार बैकहैंड विनर लगा दिया। रोम में मिली उनकी हालिया जीत ने उन्हें नोवाक जोकोविच के बाद करियर गोल्डन मास्टर्स पूरा करने वाला दूसरा खिलाड़ी बना दिया है और ऐसा करने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैंप।
0: प्रतियोगिता में भारतीय प्रशंसकों की निगाहें यूकी भांबरी पर होगी, जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरीवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में होगा, जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। जाने माने निशानेबाज और खेल प्रशासक राजा रणधीर सिंह का आज 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और पूर्व अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री सिंह ने अपने शानदार करियर में 5 बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वे भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व महासचिव होने के साथ साथ भारत और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रशासन में कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे हैं। अब वक्त हो गया है कार्यक्रम में उस शख्सियत की बात करने का, जिन्होंने अपने खेल, अपनी सोच और अपनी दमदार आवाज से भारतीय क्रिकेट को एक नई पहचान दी। 27 मई 1962 में जन्मे रवि शास्त्री ने भारतीय क्रिकेट को एक बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में नई ऊंचाइयां दी। 1985 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट में चैंपियंस ऑफ द चैंपियंस बनकर उन्होंने दुनिया को अपना दमखम दिखाया।
2: That's huge. That is a piggy. It's out of here. This is in the air again. Clears long off. 3 in a row. It's 4 in a row. 5.
0: स्पोर्ट्स कैन की ओर से रवि शास्त्री को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव

0: को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
3: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वही विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्यक्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुँचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और

लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Centre approves extension of Sarthak PDS scheme to modernise public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heat wave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says ex-